फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुबह की भीनी भीनी हवा के साथ, सूरज की किरण सुगंध के साथ आप सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और

0: कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना, गीतकार और संगीतकार डॉक्टर ललित मोहन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृ वंदना। गीतकार और संगीतकार थे डॉक्टर ललित मोहन। अब आपको सुनवा रहे हैं गणेश वंदना। गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार हैं हरिओम शरण।

शर्मा बंधु के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद सुबह 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और साथी। भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 6:40 से। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत। विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर KS यादव। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 से। सुबह 7:20 से सुनिएगा साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण मासूम आलम का। संयोजन व प्रस्तुति सुव्रता यादव की। संगीत सरिता कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:50 से। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे सुबह 8 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सुबह 8:30 से सुनिएगा बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। सुबह 9 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। सुबह 9:10 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 से सुनिएगा जिले की चिट्ठी रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 से सुनिएगा फोन करें गीत सुने। सुबह 11 से सुनिएगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2 से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर 2:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 से सुनिएगा विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5 से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:02 से सुनिएगा युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। शाम 5:40 से सुनिएगा संगीत सरिता। शाम 6 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 6:30 से सुनिएगा सदाबहार गीत। लोकरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:45 से। शाम 7 से सुनिएगा हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 7:20 से सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम। शाम 7:30 से सुनिएगा ग्राम सभा रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 से सुनिएगा सुर्खियों में कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा डगर विकास की। विषय स्टार्टअप इंडिया योजना आकाशवाणी भोपाल का योगदान रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मनचाहे गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9 से और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11 सुनिएगा हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और साथी।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था ए हरिहरन और साथियों का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं दिल दिया दर्द लिया फिल्म से शकील बदायूनी के बोल। संगीतकार हैं नौशाद, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे बीवी और मकान फिल्म से ये गीत। आवाज और संगीत था हेमंत कुमार का। और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया
6: जाओ भाई।
7: आरबीआई कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं आदमी फिल्म से सुधा मल्होत्रा की आवाज, गीतकार सरताज, संगीतकार रामनाथ।

इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही भूले बिसरे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गत शुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह।

श्रोताओं, प्रातःकाल की वेला केवल नए सूर्योदय का संदेश नहीं देती, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि हर नया दिन हमें स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर देता है। किसी विचारक ने कहा है, समाज का भविष्य संसदों में कम और मनुष्यों के चरित्र में अधिक लिखा जाता है। सच भी यही है कि समाज की दिशा कानूनों से अवश्य प्रभावित होती है, पर उसकी दशा नागरिकों के आचरण से निर्धारित होती है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां साधन बड़े हैं, सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन यदि मनुष्य के भीतर संवेदना कम हो जाए तो विकास अधूरा।

ये केवल प्रार्थना नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसमें हम केवल अपने सुख की कल्पना नहीं करते बल्कि समस्त मानवता के कल्याण का भाव निहित है। ये ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान उसके युवाओं के चरित्र, आत्मविश्वास और सेवा भाव पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आप स्वयं वो परिवर्तन बनिए जो आप संसार में देखना चाहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लोग बदलने चाहिए, लेकिन परिवर्तन का सबसे पहला कदम अपने भीतर उठता है। यदि हमारे व्यवहार में सत्य, करुणा, अनुशासन और ईमानदारी आ जाए तो समाज को बदलने में देर नहीं लगेगी। श्रोताओं, हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों से भी समाज को बेहतर बना सकते हैं। किसी की सहायता करना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर ध्यान रखना, यातायात के नियमों का पालन करना, वृक्ष लगाना, बुजुर्गों का सम्मान करना और बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करना, ये छोटे छोटे कार्य ही बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। आइए इस नए दिन, नई सुबह में हम एक छोटा सा संकल्प लें। हम शिकायत कम करेंगे, जिम्मेदारी अधिक निभाएंगे, आलोचना कम करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो एक परिवार बदलता है, जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है और समाज बदलता है तो राष्ट्र का भविष्य बदल जाता है। आज सुबह सुबह बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी सागर से प्रस्तुत है कृषि संकेत कार्यक्रम। इसमें सुनिए खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन, विशेषज्ञ डॉक्टर के एस यादव।
2: किसान भाइयों, खरपतवार नाशी, जैसे ही आपका बीज जो है उपचार करने के जब बात करेंगे तो खरपतवार नाशी की समस्या आती है। तो खरपतवार नाशी के रूप में अभी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से तीन तरह के खरपतवार नाशी आते हैं। सोयाबीन में जो खरपतवार होता है, एक तो मतलब चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार, किसी के खेत में पतली पत्ती वाला, सकरी पत्ती वाला, और किसी के खेत में सकरी और चौड़ी पत्ती वाला, दोनों होता है। और पानी मान लो नहीं गिरता है, एक दिन दो दिन नहीं गिरता है बुआई के बाद, ऐसी स्थिति में पेंडामेथिलीन एक रासायनिक दवा आती है, या फिर आपको सोयाबीन में खासकर स्ट्रांग आर्म या डाइक्लोसुलम एक दवा। तो डाइक्लोसुलम की जो मात्रा है वो 25 से लेकर के 36 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर, इसको ढाई का भाग देंगे तो एक एकड़ के लिए निकल आएगा। तो उसका एक पैकेट भी आता है, इतने ही ग्राम एक एकड़ के लिए रहता है। तो उसको आप अगर आप पावर स्प्रेयर उपयोग कर रहे हैं तो खास करके 120 लीटर प्रति हेक्टेयर, या एकड़ में आप अगर कर रहे हैं तो खास करके जो है 4 से 5 पंप जो है प्रति एकड़ की दर से उसमें मिला लीजिए। लेकिन बुवाई के, सोयाबीन की बुवाई के जस्ट बाद 24 घंटे, ज्यादातर 48 घंटा के भीतर ऊपर से अगर छिड़काव कर देते हैं तो 25 दिन तक कोई भी खरपतवार 25 से 30 दिन तक नहीं निकल पाता। प्री इमरजेंस जिसको बोलते हैं, अंकुरण पूर्व, ये चौड़ी पत्ती जिसके खेत में ज्यादा हो तो इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर किसी किसान के खेतों में, ये पूर्व खेतों में देखा हो कि चौड़ी और पतली दोनों है, ऐसे में पेंडामेथिलीन जो है आप ले लीजिए 30 cc।

0: करके आता है, 37.5 ईसी आती है। तो जब आप 30 ईसी का लेंगे तो ये कम से कम एक एकड़ में 1.25 सवा लीटर करीब पर एकड़ जो है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये लेते हैं 37.5 मात्रा जो है उससे कम लगती है, वो करीब जो है 700 ml जो है पर एकड़ जो है आपको लगेगी। तो ऐसे किसान भाई की दो चीज याद रखें कि डाइक्लोसुलम सोयाबीन में, अन्य में नहीं, केवल सोयाबीन के लिए रेड है, या फिर पेंडामेथिलीन आपकी सार्वत्रिक दवा है, कोई भी चाहे दाल वाली फसल हो, खासकर दाल वाली फसलों में पोस्ट इमरजेंस दवा नहीं है। तो अगर आप उड़द लगा रहे हैं, हालांकि सोयाबीन की बात कर रहे हैं पर बताना उचित समझता हूं, तो पेंडामेथिलीन का एक छिड़काव आप अरहर है, उड़द है, उसके बाद बुआई के बाद 48 घंटे के भीतर छिड़क दीजिए तो सारे चौड़ी और पतली खरपतवारों से छुट्टी मिल जाती है। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि अगर इतना पैकेज आप अपना लेते हो, बाद में जो है आपको केवल कीट और रोग नियंत्रण करना पड़े, तो ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि किसान भाई हर चीज का सही समय पर सही दवा और पूरा अगर पैकेज अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर सोयाबीन से 10 क्विंटल जो है आप प्रति एकड़ जो है सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा ही प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको औसत बता रहा हूं। और किस्मों के बारे में खासकर किसान भाई कई होते हैं कि नई किस्म कौन सी आ गई, अच्छी बात है, जागरूकता है, लेकिन 3 से 4 साल के भीतर की जो नई किस्में चल रही हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो उनका भरपूर उपयोग करें। लगभग सभी किस्मों की जो उपज है वो 20 से 25 क्विंटल औसत उपज है, इससे कम किसी किस्म की नहीं है। कम अवधि की जो किस्में एक आध दो उनकी 20 क्विंटल है, लेकिन बाकी सभी किस्मों की उपज जो है, तो अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा जो है परेशान ना हो। नई किस्में मिले तो उसका बीज बना लें और अगले साल उसका उपयोग करें, और किसानों में के बीच में भी एक दूसरे से उनको जो है देने का काम करें।
1: खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी अभी आपने सुनी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर KS यादव।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन यूरोपीय देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात के 136वें एपिसोड में देश से संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवाड़ी को देंगे 193 करोड़ के कार्यों की सौगात। और प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आईं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसिडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। वहीं रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद पहली राजकीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के जरिए हुआ, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया। CJP ने बताया कि सरकार ने उनकी सभी मांगे स्वीकार कर ली हैं, जिनमें नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देना भी शामिल है। पार्टी के अनुसार केंद्र और NDA शासित राज्यों में आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी और भविष्य में कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे संयुक्त कार्यालय कलेक्टर भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। डॉक्टर यादव निवाड़ी में 46 और पृथ्वीपुर में 29 राजस्व स्टाफ आवासों का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा जिला चिकित्सालय निवाड़ी के 100-बिस्तरी भवन को अपग्रेड किया जाएगा। जेवरा, पृथ्वीपुर और सेंद्री में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण होगा। प्रदेश में पेपर लीक, नकल और परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन अदालतों को नामित किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पहल पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। ये अदालतें प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना में इसका ऐलान किया था। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बढ़ेगा।
2: हमारा प्रयास है, हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्यप्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय।
1: दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दतिया में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने परिवार आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि सभी समाज को संगठन में उचित भागीदारी मिल सके। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉडल और अभिनेत्री टूषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित उनकी सास और भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। विशेष सीबीआई न्यायालय ने कल देर शाम उनकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरिबाला सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। वहीं सीबीआई ने कहा कि सिर्फ उम्र या महिला होने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

अब गिरिबाला सिंह और सह आरोपी समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 90,000 अतिथि शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी सीएल मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब तक अतिथि शिक्षकों को सत्र में एक भी सीएल नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत पदभार ग्रहण करते ही शिक्षक को एक दिन की सीएल मिलेगी और हर 30 दिन की सेवा पर एक अतिरिक्त सीएल जुड़ेगी। हालांकि एक बार में अधिकतम 3 सीएल ही ली जा सकेंगी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये दिन उस विजय अभियान को याद दिलाता है जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से रणनीतिक पर्वतीय शिखरों को वापस हासिल किया था। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और सुगम बना दिया गया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को एकादशी के दिन नई दर्शन व्यवस्था लागू की है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि सुखदेव मुनि द्वार के चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब श्रद्धालुओं को 10 फीट की दूरी से दर्शन कराए जा रहे हैं और दर्शन के बाद उनकी निकासी चांदी द्वार से की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं का दल कल मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। जिला योजना भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को विदा किया। श्रद्धालुओं का ये दल बसों से नैनपुर पहुंचा, जहां से आगे की यात्रा रेल मार्ग से की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकराम भरसेट ने कल सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा की। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 6 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के ग्राम खटोला से 24 जुलाई को रेस्क्यू किए गए तेंदुए की उपचार के दौरान कल मृत्यु हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुए को रेस्क्यू के बाद चिकित्सालय में निगरानी के लिए रखा गया था। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीट बरबसपुर में कल एक मादा बाघिन का रेस्क्यू कर उसके गले में लगे रेडियो कॉलर को हटाकर उसे प्राकृतिक आवास जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। और शाजापुर पुलिस लाइन में कल रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संयोजन व प्रस्तुति सुव्रता यादव की, संकलन व निर्माण मासूम आलम का।
1: गागर में सागर। श्रोताओं, एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर।

0: सागर मंथन से।
1: सागर मंथन,
0: इसमें सबसे पहली जानकारी है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में आयोजित 68वें फाउंडेशन डे के बारे में। इस पर हमें जानकारी दे रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस की हेड प्रोफेसर ममता पटेल जी।
2: टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 68th डिपार्टमेंटल फाउंडेशन डे और इसकी शुरुआत जब ये विभाग बनने वाला था तो 1950 में यूनेस्को ने ये रियलाइज किया कि कुछ टीचिंग होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, तो उन्होंने कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा एशिया के लेवल में। तो उस वक्त 1955 में एक सिंपोजियम हुआ लंदन में, तब यूनिवर्सिटी ऑफ सागर का नाम कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं, तो इसी कारण से 18 जुलाई 1959 में ये विभाग अपराध शास्त्र विभाग के नाम से पहले शुरुआत हुआ। फिर कुछ सालों बाद इसमें फॉरेंसिक साइंस या न्यायिक विज्ञान भी इसमें जुड़ गया, तो इस प्रकार से इस विभाग का पूरा नाम अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग बना। सबसे पहले जो यहाँ के हेड थे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जीपी भट्ट थे, वो पहले यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। आज देखिए इतने सालों बाद अब हम लोग भी अब इस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि पहले तो पौधारोपण किया जाए इस उपलक्ष्य में।
0: इस जानकारी के बाद अब है अगली जानकारी जो है जिला न्यायालय सागर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के बारे में। तेईस जुलाई दिन गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय सागर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन के बारे में हमें बता रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्री अंकित श्रीवास्तव जी।
3: जी बहुत धन्यवाद, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ, साथ ही मैं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के पद पर भी पदस्थ हूँ। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सागर जिले में हमारे कार्यालय में न्यायालय में पदस्थ समस्त कर्मचारी एवं अधिवक्तागण तथा अधिकारीगण के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के सामंजस्य से उनके सहयोग से एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि न्यायालय में जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जो सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हैं एवं जो अधिवक्ता भाई हैं जो सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनको एक ही मंच पर सभी प्रकार के विशेषज्ञ प्राप्त हो सकें और वह अपनी समस्या उनसे साझा कर अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। आज हमारे शिविर का सबसे महत्वपूर्ण पल यह रहा कि सभी प्रकार की जांचें खून से संबंधित यहाँ पर की जा रही हैं, साथ ही साथ ईसीजी भी, जिन अधिवक्ताओं को एवं कर्मचारियों को समस्या बताई है तो उनका ईसीजी भी यहाँ पर किया जा रहा है और इससे सभी लोगों ने लाभ प्राप्त किया है।
0: असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सहायक अधीक्षक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के डॉक्टर भूपेंद्र कुमार रोहित जी ने इस शिविर के बारे में आकाशवाणी सागर को बताया।
4: मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार रोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सहायक अधीक्षक बीएमसी सागर से।
5: अभी देखिए यहाँ जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है एडीआर में, जिला न्यायालय परिसर में, तो इसके बारे में बताइएगा कि अभी जो जांच हुई है तो किस प्रकार से जांचें हुई हैं और किस प्रकार से मरीजों के क्या क्या मर्ज अधिकतर आपको मिले।
4: बेसिकली हमने जो यहाँ पे देखा कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनके मरीज हमको ज़्यादा मिले हैं और हार्ट के भी मिले हैं, तो उनकी ईसीजी भी यहाँ कराई गई है और उनको उचित सलाह दी गई है, उचित दवाइयाँ दी गई हैं, मुफ्त दवाइयाँ वितरण कराई गई हैं उनको और जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट उनके मोबाइल पे SMS के थ्रू पहुँच जाएगी।
5: अच्छा, कौन कौन सी जाँचें हो रही हैं यहाँ पे?
4: अपने पास ब्लड की जितनी भी जाँचें हैं वो सारी हो रही हैं, ECG हो रही है, शुगर की जाँच हो रही है, यूरिन की जाँच हो रही है, BP अपन देख रहे हैं, बेसिक जो जाँचें वो अपन कर रहे हैं। जहाँ अपन को लग रहा है कि भाई हॉस्पिटल आने की जरूरत है उनको बाकायदा सूचित किया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल आइए, हॉस्पिटल में वो जाँच भी की जाए।
0: इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपनी जांच कराने आए कुछ अधिवक्ता गण एवं कर्मचारी गण के विचार।
6: मैं अजय सिंह ठाकुर, एडवोकेट सिविल कोर्ट सागर।
5: अभी आप यहाँ जांच करवाने आए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी जांच हो रही है और आपने कौन सी जांच करवाई?
6: मैंने शुगर की और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जाँच करवाई।
5: तो यहाँ कैसा लग रहा है?
6: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ सही है।
7: बेटी भाई लोधी।
5: कहाँ पदस्थ हैं?
7: न्यायालय में।
5: कौन से पद पर?
7: व्रत पद पर।
5: तो अभी जो स्वास्थ्य शिविर जांच का, तो इसमें आपने कौन सी जांच करवाई?
7: हमने शुगर की, थायराइड की।
5: यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए।
7: अच्छी बढ़िया व्यवस्था है।
8: मैं श्रीमती रश्मि तनेजा, एडवोकेट।
5: सागर न्यायालय में ही हैं आप?
8: हाँ जी, सागर न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ।
5: अभी ये स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है यहाँ पे ADR में, विधिक सहायता कार्यालय में, तो आपने अभी यहाँ चेकअप करवाया?
8: हाँ जी, मैंने भी अभी BP चेकअप करवाई हूँ, बाकी अभी शुगर और ECG वगैरह भी करवाना है तो करवा रहे हैं।
5: अच्छा, और कैसी व्यवस्था है यहाँ की?
8: व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सारे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से लिख दे रहे हैं कि BP कराना है, शुगर कराना है या फिर ECG कराना है और लिक्विड प्रोफाइल करवाना है, वो सारा लिख दे रहे हैं वो।
0: और अब अगली जानकारी पर चलते हैं, जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्याख्यान के बारे में। 24 जुलाई को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के विधि आयाम पर गौरव व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के चांसलर एवं पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी ने अपने वक्तव्य में कहा,
9: आप द्रवित है, आप खुश नहीं है, तो आप कितने भी चेहरे पर चेहरे लगा लें उसके बाद भी आप दुखी रहेंगे। आप सरल नहीं होंगे, आप स्वाभाविक नहीं होंगे, आप प्रामाणिक नहीं होंगे, आप मौलिक नहीं होंगे। और इसलिए जो हमारी आंतरिक जो शक्तियां हैं, और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत पहले कह दिया था, मुझे लगता है कि वी हैव टू रिविजिट पर्टिकुलरली दी एजुकेशनिस्ट, कि हमारे फोरफादर्स ने क्या कहा और वो आज भी कितनी सही है। तो जो कुछ भी है हमारे अंदर परफेक्शन है, उसका मैनिफेस्टेशन ही एजुकेशन है। उन्होंने कहा, द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन एंड ऑल ट्रेनिंग इज मैन, कैरेक्टर फॉर्मेशन। मालवीय जी ने इसमें नेशन बिल्डिंग जोड़ा, राष्ट्र निर्माण शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी, जो कि हैं निदेशक एकेडमी गतिविधियां डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, उनके विचार।
10: प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत, इस समय मैं डायरेक्टर हूं एकेडमिक अफेयर्स में और प्रोफेसर हूं समाजशास्त्र में, समाजकार विभाग में। देखिए, हमारा विश्वविद्यालय गौर व्याख्यान माला के नाम से एक कार्यक्रम संचालित करता है और साल भर निरंतर कुछ ऐसे विशेष व्याख्यान हम लोग आयोजित करते हैं जो राष्ट्र के हित के हो सके, देश के हित के हो सके, ज्ञानवर्धक हों और लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी दे सकते हों। इसी श्रृंखला में एक गौर व्याख्यान माला के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया है।
0: इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर यशवंत सिंह राजपूत जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा,
11: अनदर एस्पेक्ट व्हिच इज हाइलाइटेड इज द न्यू एजुकेशन बिल व्हिच इज कमिंग अप। आई हैड मेड अ प्रेजेंटेशन बिफोर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन द पार्लियामेंट एंड देयर आर वेरी गुड फीचर्स इन दैट पर्टिकुलर बिल एंड वन थिंग which I emphasize to the parliamentary committee that like UGC, the constitution of the committee should be the granting authority.
0: इस व्याख्यान माला में शामिल हुए कुछ दर्शक एवं श्रोता गण के विचार।
12: जी, मैं ऋचा जैन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरुआत हुई थी उसकी, और उसके तहत स्टूडेंट के लिए सर्वांगीण विकास की बात की गई है, जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ थ्योरी पढ़ के और नंबर लाकर इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। उसके द्वारा ऐसा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत काम किया जाए SINEP के द्वारा हमारे शिक्षकों का भी ये कोशिश रहती है और हमने भी इसको लागू किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए।
13: मैं प्रोफेसर नागेश दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, डीन ह्यूमन रिलीजन सोशल साइंसेज। आज जो व्याख्यान हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उनके विभिन्न पक्षों पर बात हुई है। प्रोफेसर डीपी सिंह जो कि इस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो चूंकि यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं और नैक के भी रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा नीति को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। उन्होंने शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उनके निर्माण से संबंधित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला और उन्होंने खासतौर से शिक्षा नीति में जो राष्ट्रीय संस्कृति

0: भारतीय संस्कृति की गौरव की बात है। मानव के जो आध्यात्मिक दृष्टि होना चाहिए हर नागरिक में, और भारतीय शिक्षा नीति किस तरह ग्लोबल बेस पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा सकती है, इसके संबंध में बहुत अच्छा निर्देशन दिए हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी है, मैं योग विभाग से हूँ, और बहुत ही प्रेरणादायक ये NEP पे जो लेक्चर हुआ, बहुत ही अच्छा प्रयास है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिससे हम सभी फैकल्टी स्टूडेंट सबको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है, और हम इस मार्ग पर अपने आप को अग्रसर करते हुए अपने सभी जो भी लेक्चर्स हैं और जो भी शिक्षा है उसको आगे करते हैं।
2: मेरा नाम बिल्कुल यादव है, BSc BEd मैथ्स कोर्स का छात्र हूँ मैं।
3: तो अभी आपने ये व्याख्यान अटेंड किया, तो इसके बारे में बताइएगा।
2: व्याख्यान बढ़िया था, सर ने थोड़ी दो तीन लाइव शब्द बोले थे। सर ने बोली थी कि एजुकेशन के 5 पिलर हैं, तो उसमें एक अकाउंटेबिलिटी शब्द न्यूज में चल रहा है, तो आजकल उससे रिलेटेड। तो सर ने बोला था कि टीचर्स को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, तो हम लोग टीचर्स का कोर्स ही कर रहे हैं।
4: मेरा नाम मनीष वाधवानी है, मैं यहीं सागर के पास 50 किलोमीटर दूर खुड़ाई है, मैं वहाँ से हूँ, और यहाँ यूनिवर्सिटी से मैं भी BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी आज व्याख्यान हुआ, जो भी लेक्चर दिया इनने, काफ़ी अच्छा था, और थोड़ा हमें NEP के बारे में बताया गया।
5: अब इसके बाद है हमारा अगला सेगमेंट शिखर की ओर। शिखर की ओर, इस सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर के दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के बारे में।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश भाविश टाले और पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। और ये जो अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, इसको हम विशुद्ध रूप से ये माने कि यह पशुपालकों के लिए एक जागरूकता अभियान है, और पहले भी 2 बार यह जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाया जा चुका है। अब यह कार्यक्रम यदि हम जागरूकता यदि इसको कह रहे हैं, तो आखिर कोई योजना है या फिर कुछ और है? तो यह विशुद्ध रूप से एक जागरूकता है। जैसा हम देखते हैं कि कृषि में यदि हम ग्रामीण अवस्था की बात करते हैं, तो कृषि एक प्रमुख भूमिका में है। साथ साथ यदि हम पशुपालन की बात करें, तो ये भी देखते हैं कि जो पारंपरिक रूप से अपना रहा है जो पशुपालन को, अब धीरे धीरे व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो व्यवसाय कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि जब कृषि में निरंतर नवाचार हुए, तकनीकी उसमें शामिल हुए, और हमारा कृषक जो है पहले से कहीं अधिक उपज उसी खेती में कर रहा है, जो उसके पास में संसाधन थे उसमें नवाचार करके, जब कृषि में कई तकनीक का उपयोग करके वह अधिक लाभ की स्थिति में अब धीरे धीरे आया है कृषि में। अब दूसरी ओर हम चलते हैं कि हम पशुपालन जो कि पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में, और वो भी एक अनिवार्य रूप से है कृषि के साथ। यदि हम एक किसान को किसान के नजरिए से देखते हैं, मगर हम एक कहे कि यदि समग्र किसान जिसको कहे, तो खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी कर रहा है। और इन दिनों ये भी है कि हमारे जो युवा है, पढ़े लिखे है जो, बल्कि मैं उसको कहूँगा कि जो ग्रामीण युवा है, वो ग्रामीण युवा भी तकनीकी के साथ पशुपालन को अपना रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। अब ये था कि जब जागरूकता अभियान की जब बात आई है कि पशुपालन में जागरूकता हम किस तरह से करें, तो जो जागरूकता के कई आयाम थे, हम ये देखते हैं कि शिविर लगाए जाते थे, या कृषि के भी शिविर जैसे लगाए जाते थे, या फिर आप ही के माध्यम से किसान वाणी है, या TV पर कृषि दर्शन है। तो ये कई आयाम थे जो ग्रामीण जो पशुपालक या किसान है उसको जानकारी देने का। अब ये जो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान को यदि हम उसको देखें कि आखिर इसमें क्या नया है, तो हम इसको इस तरह से समझे कि यह एक अनौपचारिक वार्तालाप है। अनौपचारिक वार्तालाप, हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई जटिल समस्याएं जो है हमारी आपस में जब बात होती है, तो बड़ी आराम से सुलझ जाती है। वो लगता है कि हाँ, हम कर तो रहे थे कोई काम, मगर उसको तकनीकी रूप से नहीं कर रहे थे। तो दुग्ध समृद्धि अभियान इस तरह का एक जागरूकता अभियान है, जो अनौपचारिक रूप से पशुपालक के घर पर जाकर उनको पशुपालन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। अब वो जानकारी में क्या समावेश है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो जो हम पारंपरिक रूप से जो या निरंतर जो जानकारी दे रहे हैं आपके किसान वाणी के माध्यम से या हमारे जो शिविर के माध्यम से, ये होता है कि पशुओं में समय पर टीकाकरण का कार्य करना चाहिए या पशुओं को पोषण आहार संतुलित रूप से देना चाहिए या फिर पशु में किस तरह से नस्ल सुधार हो ताकि हमें अधिक से अधिक पशुपालक को उनके संतति से अधिक से अधिक लाभ हो। ये जानकारी पहले भी दी जाती रही है, अब जब विस्तृत रूप से उन्हें बताया जाता है कि यदि आपके पास जो भी अवर्णित नस्ल है या हम उसको शुद्ध रूप से कहें कि जो देसी नस्ल के पशु है और देसी नस्ल के पशु या हम उसमें भी यदि हम बात करते हैं कि नर यदि हम गौवंश की बात करें तो नर गौवंश अभी ग्रामीण क्षेत्र में अब उसका उपयोग बहुत कम होने लगा है या हम उसको कहे कि नाटा या सांड का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है कृषि में, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कृषि में नई नई तकनीक के रूप में आ रहा है, भूमि सुधार के अलग तकनीक थी, फिर बाद में ट्रैक्टर आ गए और भी कई तरह से जमीन को सुधार के रूप में तकनीकी कौशल का समावेश हुआ। तो अब जब गौवंश में नर गौवंश उतने किफायती नहीं रहे हैं खेती में, तो ये भी देखने में आ रहा है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वो जो नर गौवंश है वो आपको सड़कों पर विचरण करते दिखेंगे। तो पशुपालक के लिए वह एक लाभप्रद न होकर वो उनके लिए भी एक समस्या हो रही है। तो अब क्या हम जानकारी दे रहे हैं, ये है जानकारी कि यदि नस्ल सुधार करते हैं और उस नस्ल सुधार में भी आपका जो देसी पशु है देसी गौवंश है यदि हम उसमें नस्ल सुधार यदि करते हैं और संतति जो होगी जो बछिया होगी वह उन्नत नस्ल की होगी और उसमें दुग्ध उत्पादन जो आपका देसी जो गाय थी जो अमूमन 1 से 1.5 लीटर दूध दे रही थी वो 3 से 4 गुना यानी 4 से 5 लीटर तक वो दूध दे सकती है। और ये बात जब अनौपचारिक रूप से कही जाती है तो पशुपालक उस चीज़ को समझता है और उस चीज़ के लिए वो फिर तकनीक भी जानना चाहता है कि आखिर इसके किस तरह से होगा, कौन हमको सहयोग करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र पर जो हमारे कार्यकर्ता है इसको हम गौ सेवक कह सकते हैं, दूसरे और मैत्री कह सकते हैं, वो आते हैं कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। तो पशुपालकों से ये भी मेरा निवेदन रहेगा ये आपके माध्यम से कि आपके जो भी देसी गौवंश है उसमें नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने देसी नस्ल की जो गौवंश है उसमें आप उन्नत नस्ल के बीज या वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराए ताकि संतति जो हो वह उन्नत हो। यह एक प्रमुख रूप से हम कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के लिए नवीन तकनीक के रूप में है जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक है, पशुपालन व्यवसाय के लिए लाभदायक है ये।
5: और अब आते हैं सेगमेंट सागर के मोती पर। सागर के मोती।
3: श्रोताओ, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर, इसमें आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है सागर के मोती, और इस सेगमेंट में हम आपको ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ खास होता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले आइए हम उनसे उनका नाम पूछते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा परिचय हो जाए, तो आप अपना परिचय दीजिएगा।
7: सर नमस्कार, और आकाशवाणी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमन ठाकुर है, मैं दीनदयाल नगर मकरोनिया में वर्तमान समय में रहता हूँ और मेरा पैतृक निवास है बंडा के पास, एक छोटा सा क्षेत्र है बिनय का, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ।
3: आप किस गेम में रुचि रखते हैं?
7: मेरी मेन रुचि रही है एक बुशो करके एक गेम है, बॉक्सिंग। ये एक उसमें आपका कराटे बुशो ताइक्वांडो सभी चीज़ों का एक मिक्स गेम है। ये मैं फर्स्ट क्लास से खेलता आ रहा हूँ। उसमें रुचि मुझे इस प्रकार आई कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने एक हमारे यहाँ सर को पहुँचाया, श्री हरिकांत तिवारी जी, तो उनसे हम लोग इंस्पायर हुए, वो इंटरनेशनल लेवल तक खेल कर आए हुए हैं। ट्रेन किया, फिफ्थ क्लास तक मैं उनके सानिध्य में खेला, स्टेट लेवल तक खेला, गोल्ड सिल्वर मेडल वगैरह 2-3 बार लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे की शिक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई चला गया, तो हमारे नवोदय विद्यालय में ये गेम नहीं था, तो फिर मेरा 5 साल का गैप लग गया। लेकिन मैं अपने स्तर पर प्रयास करता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, सर के मार्गदर्शन भी लेता रहा। फिर 10वीं के बाद जैसे ही मैं वापस सागर आया 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए, तो मैंने सर से पुनः संपर्क किया और उन्होंने मुझे फिर ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। इसी दौरान फिर कहा उन्होंने कि आप टूर्नामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए, तो मैं स्टेट लेवल तक खेल कर आया हूँ और इसके साथ साथ तात्या टोपे अकेडमी है हमारे भोपाल में, मध्य प्रदेश शासन का युवा कल्याण विभाग उसका संचालन करता है, वहाँ अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण मैं वहाँ पर नहीं जा सका,
3: अच्छा थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइएगा बुशो ये क्या होता है।
7: बुशो जो गेम है इसमें आपका ताइक्वांडो कराटे ये इन सब तो और जितने भी ये गेम हैं सेल्फ डिफेंस वाले उसका ये मिक्सअप है। इसमें होता क्या है कि आप के जो प्रतिद्वंदी रहते हैं जब आप रिंग में उनसे फाइट करते हैं तो आप एल्बो नहीं मार सकते, नी नहीं मार सकते मतलब घुटना या अपना हाथ, और गुस्सा नहीं दिखा। इसके अलावा आप उनको फ्री स्टाइल जितना जैसा आप मार सकते हैं मार सकते हैं उसमें, और डिफेंड करना पड़ता है।
3: अच्छा इसमें क्या चोट लगने का खतरा होता है?
7: हाँ चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उसमें हमें प्रॉपर किट पहनाई जाती है, मास्क रहता है, टूथ गार्ड रहता है उसमें, बॉक्सिंग ग्लव्स रहते हैं, चेस्ट गार्ड रहता है, ये सारी किट के साथ हम रिंग में उतरते हैं, उसके बाद फिर अपना खेल का प्रदर्शन करते हैं।
3: अच्छा इसका टाइम कितना होता है, कितने देर का ये गेम होता है?
7: एक मैच में 3 राउंड करे जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट का रहता है एक राउंड।
3: अच्छा इसमें पॉइंट किस तरह से बनते हैं?
7: पॉइंट आपको जैसे 5 पॉइंट मिलते हैं, उसमें पटकने पर मुंह पे पंच किया तो उसके 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा पेट पे पंच करे में, फिर थाई किक होती है, जैसे किक की बात करें तो एक होती है थाई किक जो अपन जांग पे मारते हैं तो उसके 2 पॉइंट मिलते हैं, फिर एक आपको जैसे सर पे किक मारी, तो इस टाइप से अलग अलग उसके स्टंट्स के पॉइंट्स मिलते हैं।
3: सागर में आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ करते हैं?
7: मेरे जो सर हैं श्री हरिकांत तिवारी जी, वो मूलतः सागर के ही बरारू गाँव से निवास, और उनके सानिध्य में कई खिलाड़ी देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग बरारू में ली हुई है। जब मैं वहाँ ट्रेनिंग लेने पूर्व में जाता था तो मैं अपने घर से साइकिल से कभी पैदल, लगभग 7 से 8 किलोमीटर का अंतर है मेरे घर से और बरारू गांव का, तो मैं पैदल, या मेरे सर का कहना ये रहता था कि आप गाड़ी से नहीं आइए, साइकिल से आना तो आप साइकिल से आइए, दौड़ते हुए आइए, जिससे आप वार्म अप होगा, फिर यहाँ आके आप जो टाइम देंगे तो वो प्रॉपर खेल के लिए देंगे, ये नहीं कि आप यहाँ आए फिर तैयारी कर रहे हैं वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा फोकस रहता है कि हमें अपना स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है कि हम ज़्यादा देर तक प्रतिद्वंदी के सामने टिक सकें, और कैसे हम खुद को सेल्फ डिफेंड करते हुए सामने वाले को पटकने दें उन्हें हराएं। तो वहां से मैंने बरारू से ट्रेनिंग ली, कुछ समय मैंने ट्रेनिंग ली अपने खेल परिसर सागर में भी, तो यहां पे एजाज खान सर हैं और वर्तमान समय में भी हैं।
3: अभी तक आपको कितने पुरस्कार मिले हैं?
7: पुरस्कार की ऐसी कुछ गिनती तो अभी नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन 10 से 15 मुझे पुरस्कार मिले हुए हैं।
5: इसके बाद अब नजर डालते हैं सेगमेंट माटी की महक पर। माटी की महक।
3: श्रोताओ आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर एक अंतर्गत हमारा एक सेगमेंट होते है माटी की महक, और जैसे कि आप सभी और जाना था कि माटी की महक में हम आप औरों को ऐसी ऐसी जानकारी देते हैं जो कि रेत तो बहुत ही अच्छी है, कौनों न कौनों ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। मनो आज हम कौनों व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो ने सागर को खूब घूमो है। अब सागर को घूमने के मतलब क्या है कि सागर में भी घूमे हैं और उनने सागर में जो जो देखो है वे अपन को बताए, हो सकता है कि अपन वो जगह नहीं गए हुई हैं, तो जे हैं तो आप सबसे पहले हम उनको परिचय करवा दें, तो सबसे पहले आप अपने परिचय दे।
8: सभी जनों को नमस्कार, यारो हमारा नाम है सुकांत सिंह कुर्मी, हम सागर के निवासी।
3: जी सागर के निवासी हो, हमने पहले ही बता दी आपको कि जे बते हैं सागर के बारे में, तो आपका सागर में बचपन से रह रहे?
8: हाँ लगभग 20-25 साल हो गए हैं।
3: अब हमें जा बता हमारे श्रोताओं को, देखो सागर के वासी तो सभी जगह घूमे हुई हैं, मनो कछु चीजें ऐसी छूट जाते हैं कि अपन जा नहीं पाते हैं। सबसे पहले ही तो आप जा बताओ हमें कि सागर में कहाँ कहाँ घूमे आप।
8: सबसे पहले तो चक्राघाट का नाम सौंदर्य दस्यों के नाम में जाना जाता है, वहाँ का तालाब लाका बंजारा झील, और उसके अलावा बहुत सी जगह है जैसे की गढ़पहरा हो गया अपना, बालाजी हो गया, और अटल पार्क वहाँ भी चौपाटी लगी रहती है, आते हैं लोग बाग, खान पान जो भी सब व्यवस्था वहीं पर है, और बालाजी मंदिर सौंदर्य के हिसाब से भी और भक्तों के लिए भी काफ़ी दर्शनीय स्थल है। हाँ यूनिवर्सिटी हो गया अपने सागर का, हाँ आकाशवाणी सागर भी है, वो भी अच्छा केंद्र है सागर में।
3: अब जैसे देखो आपने आकाशवाणी सागर की बात करी, तो आकाशवाणी सागर तो आप सुना थी हो?
8: जी सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ।
3: तो इधर के कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनाते हैं?
8: फोन करेंगी सुने, किसान वाणी, मन चाहे गीत, फोन करें लोक गीत सुने, ये सारे कार्यक्रम में बड़े शौक से सुनता हूँ।
3: بتاؤ دیکھو شوتاؤ ہمارے دیکھو ایسے لسنر ہے جو ساگر تو جانا تھے یہ ساگر کے بارے میں آکاشوانی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور آپ تو اپنے جو ڈاکٹر ہری سنگھ گور کیندریہ وشو ودیالے اتنے بھی گھومے ہوئی ہو تو اتنے اپن نے کاکا دیکھو
2: کیندریہ وشو ودیالے پہلے جو جانے کا راستہ دیکھو دونوں سائڈ اچھے پیڑ پودے بڑھیا روڈ اچھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جائیے
3: میں نے بڑو اچھا لگا تھے بڑو سندر پلیس ہے. اور جیسے آپ نے لاکھا بنجارا جھیل کے بارے میں بات کری تو ہمارے جو شروتا ہے ان کو بتاؤ آپ کے لاکھا بنجارا جھیل کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ گے کاکا ہے.
2: لاکھا بنجارا جھیل میں پہلی بار تو بوٹنگ کرنا بھی جس کو شوقین ویکتی ہیں جو بوٹنگ کرنے کے شوقین ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھا استھان ہے. بوٹنگ کرو بھیا لائٹ کے برسات کا موسم کے مزے لو

0: साइड से बैठो, मंदिर भी है वहाँ पर तो मंदिर में दर्शन भी करो, और ब्रिज है, ब्रिज पे से घूम के मतलब दृश्य देखने का, बिल्कुल सागर का पूरा दृश्य बिल्कुल सौंदर्य पूरा दृश्य दिखता है।
1: अच्छा, और एक अलावा और भी क्षेत्र लगे भाई हैं?
0: सदर क्षेत्र में शनिदेव मंदिर, और मकरोनिया क्षेत्र में बहेरिया में हैं बड़े शंकर जी, और यहाँ खोई गेट पर जाते हैं अपन, वहाँ मंडी के यहाँ पर भी बड़े शंकर जी हैं, वो काफी दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। ये सागर में पीलीकोटी भी अच्छा स्थान है घूमने के लिए, पीलीकोटी के यहाँ पे पहलवान बाबा का मंदिर है, वो भी काफी अच्छा दर्शनीय स्थल है, भक्तगण आते जाते रहते हैं, और बहुत चीजें हैं सागर में घूमने के लिए, आए तो बहुत अच्छा स्थान है ऐसा। सिविल लाइन में काफी चाय के शौकीन व्यक्तियों के लिए बहुत दुकान है वहाँ पे। ये अपने यहाँ सिविल लाइन के यहाँ भी रोड बहुत बढ़िया बन गई है, मकरोनिया के यहाँ भी, गोपालगंज में भी, सागर में अब साफ सफाई भी अच्छी रहती है, इन सब चीजों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सागर में ये एक अपने पीलीकोटी पे यहाँ पे खेल परिसर मैदान भी, बच्चों के लिए रनिंग करने के लिए काफी अच्छा स्थान है, जहाँ पर एक्सरसाइज करके कसरत करके बच्चे अपनी मानसिक स्थिति फिजिकल कंडीशन ठीक कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट बच्चे जो भी हैं एथलीट्स मेहनत करके राज्य स्तर पर भी गए, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने गेम पार्टिसिपेट किया है।
1: आपने कितनी विस्तार से सागर के बारे में बताओ है हमें, बहुत अच्छे लोग, और हमारे जो सागर के रहवे वाले हैं और जो सागर के बाहर के रहवे वाले हैं उनको पता चल गई हुई है कि सागर कितना सुंदर है। और अब अंत में है हमारा सेगमेंट इस सप्ताह चर्चा में।
2: इस सप्ताह चर्चा में,
1: इस सप्ताह चर्चा में है परीक्षा सुधारों पर मंत्रिमंडल का बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक के मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतें बनाई जाएंगी, जो 3 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करेंगी। दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांचुक ने 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वांचुक को स्वास्थ्य सुधारने की शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मामला नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न है। हाल ही में नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके चलते सरकार का ये कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। आपको ये अंक कैसा लगा हमें अवश्य लिखिएगा। कार्यक्रम से विदा लेने से पहले आइए हम आपको बताते चलें, इस कार्यक्रम का संकलन निर्माण और वाचन स्वर मासूम आलम का, प्रस्तुति एवं संयोजन सुब्रता यादव का है। और इस कार्यक्रम से अब दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार।
2: गागर में सागर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संयोजन व प्रस्तुति थी सुव्रता यादव की, संकलन व निर्माण था मासूम आलम का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जुनून एल्बम के इस गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे जुनून एल्बम से ये गीत, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया।

0: गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर के बोल, आवाज नुसरत फतेह अली खान की।

इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया।

0: फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय

0: भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने सीजेपी के सभी तीन मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर, पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नवभारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू, सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
3: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
4: Community, ek community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब एनवायरनमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पर एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए

0: किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीजों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग अप विद इंडस्ट्री विच इज टेकिंग सच एंड सच ग्राउंड वाटर, सच एंड सच कटिंग दैट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑन द लोकल पीपल, लोकल एनवायरमेंट, दैट नीड टू बी असेस्ड बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। दिस इज द प्रोविजन which is the precautionary principle, is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो

0: को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है। एंड सीआरजे नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए। उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये सीआरजेड का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है। यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन। एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग। Certainly, rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve through environmental justice when it's top down rather than it's what is a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं। स्टेट लेवल पे

क्या करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं, अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा।

जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं, खासकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा एक बार फिर प्यार भरा जय हिंद। चलिए बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत आज इन पंक्तियों के साथ कर लेते हैं। है अमूल उपहार प्रकृति, जीवन का आधार प्रकृति, प्रकृति से सब सफल, जगत का सार प्रकृति, कहीं पुष्प तो कहीं इंद्रधनुष, रंगों का ये प्यारा संसार है प्रकृति, कलकल छलछल नदियों का, झरने की झंकार प्रकृति, रूप कई है धरती के और कड़कड़ का श्रृंगार है ये सुंदर सी प्रकृति। तो बच्चों, इन्हीं रिमझिम सी पंक्तियों के साथ हम एक बार फिर आ गए हैं आप ही की तरह चहकती फुदकती और चलती कूदती बूंदों की तरह छमछमाती मस्ती भरी बाल सभा लेकर। और आज आप साथ हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही से पहचान लिया है, आज आप साथ हैं अपनी रानी दीदी के। तो स्वीकार है दीदी का ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। हाँ, तो आप सब तैयार हैं बाल धमाल करने के लिए, तो चलिए करते हैं बाल सभा में बाल धमाल। देखो बच्चों, हमारी ये प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है ना, ये हमारे जीवन का आधार है, हम सब इससे जुड़े हुए हैं। और देखो, इन दिनों मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, कभी तो बारिश आ जाती है और कभी कभी थोड़ी सी तेज धूप लगने लगती है, लेकिन ये धूप और पानी की बूंदें मिलकर बहुत ही सुकून दे रही हैं।

और इन दिनों आपके स्कूल तो अब पूरी तरह खुल गए हैं, रिमझिम बूंदों का मौसम अच्छा लग रहा है और देखिए ना स्कूल में और घर के आसपास नए नए दोस्त बन गए हैं आपके, पुराने साथियों से भी खूब मिलना हो रहा है, नए टीचर और नया कोर्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब पढ़ाई करने में बहुत ही आनंद आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा और अभी तो आपकी क्लासेस लगना शुरू हुई हैं, सब कुछ नया नया सा है और इन दिनों चारों तरफ हरियाली की चादर फैल गई है। हाँ, जब सुबह स्कूल जाते हैं या आप शाम को खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, सब जगह ऐसा लगता है ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली हरियाली दिखती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि धरती पर पानी की बूंदें पड़ते ही पेड़ पौधे खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। ये हवा के झोंके, ये बूंदें, ये बादलों की गड़गड़ाहट, सब कुछ मन को अच्छा लग रहा है। तो आपकी मस्ती भी कुछ कम नहीं चल रही है। कभी कभी तो आप जानबूझकर पानी में भीग कर खेल भी लेते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है बच्चों ऐसा करना, पर ज्यादा नहीं भीगना है, और भीग भी जाए तो घर आकर फटाफट से सूखे कपड़े पहन लेना है और बालों को अच्छे से पोंछ कर सुखाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते हैं ना बच्चों तो बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ध्यान से इस मौसम में रहने की जरूरत होती है। वैसे तो बच्चों हर मौसम की अपनी खासियत होती है और हर मौसम में कुछ सावधानियां भी अपनाना जरूरी होता है ताकि सभी स्वस्थ रहकर इसका आनंद ले सके। ये बात तो हो गई बच्चों अपनी सेहत की, पर हमारा पर्यावरण भी सुंदर, सुरक्षित, स्वच्छ और सेहतमंद बना रहे इसके लिए हमें भी छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, है ना बच्चों। अब देखिए आपको सोचने की बारी आ गई, अब यही सोच रहे हैं कि भला बारिश अच्छी हो, पेड़ पौधे हरे भरे रहें, यूं ही शुद्ध हवाएं मिलती रहें, भला इन सब के लिए हम क्या ही कर सकते हैं, है ना, यही सोच रहे हैं आप। तो ये तो सब अपने आप होता रहता है, ऐसा भी हम सब सोचते हैं। हाँ बच्चों, आपका ऐसा सोचना भी सही है कि प्रकृति का चक्र तो अपने आप चलता ही रहता है, और सच मानो बच्चों तो ईश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि सब मौसम अपने नियत समय से आते हैं और अपने नियत समय से चले जाते हैं। लेकिन हमें कई बार ये भी सुनने में तो आता है कि अरे कहीं बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ गए हैं, कहीं अतिवृष्टि हो गई है, तो कहीं कहीं अनुमान से कम पानी गिर रहा है, तो कहीं बहुत तेज धूप पड़ रही है, सूखा पड़ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कुछ गलतियां हमसे जरूर हो रही हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे उसे बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास हमें करने ही होंगे, तभी हम इन सारी बड़ी परेशानियों से बचे रहेंगे। और वे छोटे से प्रयास हम जान लेते हैं कार्यक्रम बाल सभा में, जिन्हें अपनाकर हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वे छोटे से प्रयास हैं बच्चों की, हम कई बार देखते हैं ना कि रोडें चौड़ी करने के लिए या बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और उन वृक्षों को सहेजना है। ऐसे ही आगे बात करें तो एक छोटा सा प्रयास हम कर सकते हैं कि हमारे जितने भी काम है हमें सूर्य की रोशनी में कर लेना चाहिए, बहुत सारी लाइट्स नहीं जलानी चाहिए, तो भी हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, ये छोटा सा प्रयास हम कर सकते हैं। और आगे बात करें बच्चों तो हमारे घर में जितने भी स्विच है, जैसे पंखा है, लाइट्स है, मिक्सी है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, एसी है, टीवी है, कूलर है, बहुत तमाम तरह के उपकरण हमारे घर में होते हैं और जिन्हें इस्तेमाल करके हम कई बार भूल जाते हैं, उनका जो मेन बटन है वो बंद करना भूल जाते हैं। हाँ, टीवी तो आप बंद कर देते हैं, लेकिन जहाँ से टीवी के लिए सप्लाई मिल रही होती है ना, वो वाला बटन हम बंद नहीं कर पाते, तो एक छोटी सी लाइट जलती रहती है टीवी में रेड कलर की, या किसी भी उपकरण में जो छोटी छोटी लाइट्स रहती है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि

जो मेन प्लग है, मेन स्विच है, हमें उसको भी बंद करना है। इस तरह हम बहुत सारी लाइट की बचत कर सकते हैं, और लाइट की बचत करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। ठीक इसी तरह बच्चों, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार है, गाड़ियां हैं, इनसे भी खूब ढेर सारा प्रदूषण फैलता है। तो आपको भी ऐसा करना है कि कहीं भी जाएं तो हम साइकिल से चले जाएं। हाँ, और कहीं दूर आने जाने के लिए हम ऐसा भी अपना सकते हैं कि जहाँ एक ही जगह जाना है तो चार गाड़ियों से क्यों जाना है ना। एक पूल सिस्टम होता है कि हमारे, चलो चारों दोस्त हैं, हमें वहीं जाना है तो हम एक गाड़ी से चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास ही यही होते हैं, और इनको अपना कर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित, सुंदर और सेहतमंद रख सकते हैं। तो बच्चों, आज कार्यक्रम में हमने जान ली कि ये छोटी बातें अपनाकर, बहुत सारे पौधे लगाकर, उन्हें सहेज कर हम अपनी धरती को, हम अपनी वायु को, हवा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और सब मिलकर खुश रह सकते हैं ना। और इतनी अच्छी जानकारी के साथ आप मधुर गीत सुनकर भी तो खुश होते हैं, ये बात दीदी अच्छे से जानती है। तो चलिए फिर सुन लेते हैं ये मधुर सा गीत।

0: हमने सुन लिया है बहुत ही प्यारा सा गीत, और कार्यक्रम में अब आपको इंतजार है अपने साथियों से मिलने का। तो चलिए मिल लेते हैं आपके अपने साथियों से बाल मंच के तहत।
1: लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
3: बाल मित्रों, आ गया है नन्हे मेहमान का क्रम, और हमारे नन्हे से मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम देवांश ठाकुर है।
3: देवांश, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
4: हम 7th में हैं।
3: आपको आज हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा।
3: और हमारे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज आपको सुन रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ लाए हैं आप? क्या सुनाएंगे उनको?
4: मैं कविता सुनाने वाला हूँ।
3: बिल्कुल, सुनाइए कविता।
4: जय जय प्यारा जग से न्यारा, सोबे सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सौभाग्य सुदेश हमारा, जय जय प्यारा भारत देश, प्यारा देश जय देशेस, अजय अशेष सदै विशेष, जहाँ न संभव अधकालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश।
3: बहुत अच्छी कविता आपने हमको सुनाई है, और बहुत अच्छा लगा। इस कविता को सुनकर एक देश प्रेम की भावना सभी के दिलों में गूंज उठती है ना?
4: हाँ।
3: आपको अपने देश से कितना प्यार है?
4: बहुत ही सारा।
3: अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है कौन सा है?
4: कमल।
3: और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
4: मोर।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एकता में अनेकता है, विविधता है।
4: पता है
3: ना? हमारे देश में समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, बहुत सुंदर है हमारा देश। आप कहीं घूमने गए हैं?
4: हाँ।
3: कहाँ घूमा है आपने?
4: हम लोग मथुरा वृंदावन घूमने गए थे।
3: अच्छा, तो आपको घूमने गए थे जब आपको, तो कैसा लगा था?
4: बहुत अच्छा।
3: बहुत सारे लोग मिले होंगे?
4: हाँ।
3: और वहाँ पे खेल खेल में बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे?
4: हाँ।
3: बहुत सारे नए नए दोस्त बनते हैं, तो कैसा लगता है?
4: बहुत ही अच्छा।
3: बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो बहुत सारी बातें भी होती होंगी।
4: हाँ।
3: और हमें लग रहा है कि आप एक कविता और सुनाना चाहते हैं जिसमें लिखा है बातें बातें, है ना?
4: हाँ।
3: क्या है कविता का नाम, आप ही पढ़ के बता दीजिए।
4: उफ ये बातें।
3: उफ ये बातें, तो सुना दीजिए उफ ये बातें कविता।
4: बात बात की बात चली, बात बात में बात बड़ी, बात बात में कह दी बात, बात बात में चुभ गई बात, बात रोष में कही गई यही बात विस्तार बनी, बात कही जो मीठी सी गहरी दिल में उतर गई, बात हंसी में घुली हुई दिल से दिल की बात बनी।
3: क्या बात है, इस कविता का मतलब समझ में आता है आपको? क्या मतलब है इस कविता का?
4: हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
3: हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मीठी बोली बोलनी चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। हाँ। है ना? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं।
4: हाँ।
3: अच्छा, आज हमारे जो छोटे बच्चे कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: हाँ।
3: बताइए क्या कहना चाहेंगे?
4: कि अपन को कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके देवांश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नन्हे मेहमान से बातचीत कर रही थी, देवांश ठाकुर से बातचीत कर रही थी सुब्रता दीदी। और यदि आप भी अपनी कुछ बातें साझा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो सागर आकाशवाणी के स्टूडियो आ सकते हैं। बुधवार शाम 4 बजे से बच्चों के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है। और चलिए बच्चों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं
5: हिंदुस्तान की।
0: बच्चों, आज झांकी हिंदुस्तान की के अंतर्गत एक बड़ी ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जानना चाहेंगे आप?

0: बिल्कुल दीदी, तो बताने ही आती है आपके लिए ये जानकारियाँ। जानते हो बच्चों, आगामी 29 जुलाई के दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, मन में फिर आपके सवाल आ बैठा है कि आखिर ऐसा क्यों, तो जान लेते हैं बच्चों। बच्चों, काली पीली धारियों वाला ये बेहद खूबसूरत मगर बहुत खतरनाक जीव बाघ जब शांत होता है तो अपनी अदाओं से किसी को भी दीवाना बना सकता है, है ना। जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है ये बाघ, पर जब गुस्से में होता है तो कोई भी कितना ही दूर क्यों ना हो, इसकी गरज से सभी कांप जाते हैं। हाँ बच्चों, बाघ यानी कि टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु तो है ही, साथ ही दुनिया में हमारा देश बाघ की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। बच्चों, हमारे देश में बाघों की सुरक्षा के लिए कई टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, रणथंबोर, जिम कार्बेट और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे बात करें बच्चों, तो बाघों के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे जंगलों की कटाई होती है निरंतर, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, या उनके घर नष्ट हो जाते हैं, या अवैध शिकार होता है। इसलिए सरकार ने, वन विभाग ने और कई संस्थाएं ने मिलकर बाघों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में की गई थी, जिसने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बाघों की सुरक्षा में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं बच्चों? हमें जंगलों और वन्य जीवों के महत्व को समझना होगा, पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी और वन्य जीव संरक्षण के बारे में दूसरों को भी जागरूक करना होगा। तो चलिए बच्चों, हम भी संकल्प लेते हैं कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, जंगलों को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग देंगे और बाघों यानी कि टाइगर सहित सभी जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश फैलाएंगे। क्योंकि यदि बाघ सुरक्षित हैं तो जंगल सुरक्षित हैं, और यदि जंगल सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। तो आज झाके हिंदुस्तान की बस यहीं तक, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए बाबा जी आ चुके हैं और पिटारा खुल रहा है, तो देखते हैं आज कौन सी कहानी निकलती है बाबा जी के पिटारे से। सुनते हैं बाबा का पिटारा।
1: बच्चों, फिर से आ गए आपके बाबा एक और पंचतंत्र की कहानी लेकर। कहानी का नाम है गोलू मोलू और मोटा मोटा भालू। बहुत पुरानी बात है बच्चों, बहुत पुरानी बात है बच्चों। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर खूब जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों को हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें है ना किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने अपनी बहन के विवाह के अवसर पर उन्हें बुलाया था। उनके मित्र का गांव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था बच्चों। जंगल घना, खूब घना जंगल, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों धीरे धीरे चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा।
2: कहाँ चलो, मैं जाऊंगा।
3: अरे मोलू, मैं तो बच के अपनी जान बचाऊंगा मोलू।
1: मगर बच्चों, मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय करने लगा मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू गुर्गुराता हुआ पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब

0: भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला,
1: अरे मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने?
2: मुझे मित्र मत बुलाओ मुझे। और ऐसा ही कुछ भालू ने कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है।
0: ये बात सुनकर बच्चों गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई, उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। बच्चों अपने दोस्त के साथ कभी भी दगा गद्दारी हमें नहीं करना चाहिए, है ना? ये सीख मिलती है हमें इस कहानी से। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताना, और बाबा फिर आएगा अगले सप्ताह एक और नई कहानी लेकर। तब तक बाबा तो ये चला।

0: बाबा जी चले गए और बहुत ही अच्छी सीख देकर गए हैं। तो बाबा जी की कहानियों से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, आप अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारिएगा, फिर देखिएगा कितना आनंद आएगा और आप खूब आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और चलिए कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं रेडियो की पाठशाला की तरफ।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: बच्चों इंद्रधनुष कैसे बनता है? अब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे है ना, तो आज हम रेडियो की पाठशाला में यही बात तो बताने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो इस चीज को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे बच्चों, तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे सूर्य का प्रकाश देखने में सफेद दिखाई देता है, पर यदि हम उसे किसी प्रिज्म में से निकालेंगे तो ये सात अलग अलग रंगों में से अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, मतलब इस प्रकाशीय विक्षेपण की घटना से इंद्रधनुष बनता है। विज्ञान की भाषा में आपको ये बात समझ नहीं आई तो और सरल भाषा में इसे समझने का हम प्रयास करते हैं बच्चों, कि जब बारिश होती है तो कभी कभी बारिश की कुछ बूंदें आकाश में बड़े आकार में रह जाती हैं। बड़े आकार में होने के कारण ये भी एक तरह से प्रिज्म का काम करती हैं, मतलब इन बड़ी पानी की बूंदों से जब सूर्य की रोशनी निकलती है ना, तो धरती पर आते आते ये अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें नीचे से देखने पर सतरंगी इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। हाँ बच्चों देखिएगा, जब कभी बारिश होती है और पानी रुक जाए या थोड़ा थोड़ा गिरता रहे, और जब कभी कभी ऐसे शाम के टाइम होता है धूप भी निकल आती है, तो देखना आप आकाश में आपको सात रंगों का एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो आपने इसका कारण तो आप समझ लिया है कि ऐसा हमें क्यों दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सूर्य का प्रकाश बारिश में जब पानी भरे बादलों से होकर गुजरता है तो ये इंद्रधनुष का रूप ले लेता है, और पानी के सूक्ष्म बूंदें अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का मुख्य कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। तो बच्चों बारिश के बाद प्रकृति का ये एक अनूठा दृश्य होता है, इंद्रधनुष हमेशा बारिश में ही दिखाई देता है। और एक और जरूर बात ये होती है बच्चों कि जब आपकी पीठ के पीछे सूर्य होगा तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके रंग भी जान लेते हैं, ये सात रंगों से मिलकर बना होता है। ये रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होते हैं, जिनमें ज्यादातर लाल बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर की तरफ होता है। तो आज रेडियो की पाठशाला बस यहीं तक, जिसमें हमने जाना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बच्चों आज का बाल सभा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसमें हमने बहुत सी जानकारियां जानी कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इंद्रधनुष कैसे बन

बनता है बाबा जी ने बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी आपको सुना दी। तो बालसभा ये जो रंगों से सजा कर हम आपके लिए कार्यक्रम लाते हैं, आपको कैसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया पत्र द्वारा भी, लेटर द्वारा भी हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज कर सकते हैं, और ज़्यादा सा है तो हमारे स्टूडियो में आकर सारे अपने मन की बात हमसे आप कर सकते हैं कि दीदी हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है और हम ये बात बताना चाहते हैं। तो आप जल्दी से हमारे स्टूडियो आ सकते हैं बुधवार शाम 4 बजे से, और आप पत्र लिखना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारा पता लिख लीजिएगा। कार्यक्रम बाल सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र सागर, और पिन कोड तो लिखना बहुत जरूरी होता है तो पिन कोड भी जान लीजिए 470001। और अब देखिएगा घड़ी ने हमें बिल्कुल इशारा कर दिया है कि अब टाइम हो गया है कि अपने बच्चों से अनुमति ली जाए, क्योंकि दीदी टाइम से चलेगी तभी तो आप भी टाइम से चलेंगे, और जो समय से चलते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। तो आप हमेशा आगे रहें बच्चों, हम तो यही चाहते हैं। तो अपने सारे काम समय से करिएगा, खूब खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पौष्टिक भोजन कीजिएगा, और हाँ अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिएगा, और दीदी के साथ बोलिएगा जय हिंद।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बातें
2: जंगल से।
1: बातें जंगल से। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में बातचीत होगी प्रकृति के तत्वों से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाने जा रहे हैं 29 जुलाई को, तो क्यों ना आज के एपिसोड में बात हो बाघ की। नमस्कार बाघ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए श्रोताओं को अपने बारे में कुछ।
3: मैं बाघ हूँ, भारत का राष्ट्रीय पशु। मेरे शरीर पर पीली नारंगी खाल और काली धारियां होती हैं। ये धारियां केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि मुझे घास और जंगल की छाया में छिपने में मदद करती हैं। हर बाघ की धारियों का डिजाइन अलग अलग होता है, जैसे हर बच्चे की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं। मैं शक्तिशाली, शांत और सतर्क जीव हूँ। मुझे घने जंगल, ऊंची घास, पानी के स्रोत और ऐसे स्थान पसंद है जहाँ मैं आराम भी कर सकूँ और शिकार भी कर सकूँ। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर समय ग्रस्ता रहता हूँ। मैं अधिकतर अकेला रहता हूँ और अपने क्षेत्र की रक्षा करता हूँ। मेरा जीवन जंगल, पानी, शिकार और शांति पर निर्भर है। अगर जंगल सुरक्षित है तभी मैं सुरक्षित हूँ। मेरी चाल बहुत शांत होती है। मैं अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करता और सही समय का इंतजार करता हूँ। इससे साथियों क्या सीख मिलती है कि ताकत का मतलब हमेशा शोर करना नहीं होता है। असली ताकत धैर्य, सावधानी और सही निर्णय में होती है। मैं अपने क्षेत्र की गंध और निशानों को पहचान सकता हूँ ताकि दूसरे बाघ यह समझ सकें कि यह इलाका किसी और का है।
4: जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार।

0: अब हम ये जानना चाहेंगे कि बाघ जी प्रकृति में आपकी भूमिका क्या है।
1: जी, प्रकृति में मेरी भूमिका अग्रणी शिकारी की है, जिसे अंग्रेजी में एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मैं जंगल के भोजन चक्र की सबसे ऊपरी कड़ी हूँ। मैं चीतल, सांभर, जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवरों का शिकार करता हूँ। इससे उनकी संख्या संतुलित रहती है।

0: देते हैं।
1: अब बाग जी, हमारा अगला सवाल है कि आपको कहाँ रहना पसंद है?
2: मुझे ऐसे जंगल पसंद हैं जहाँ घनी झाड़ियाँ, ऊंचे घास, बड़े पेड़ और साफ पानी हो, जैसे नदी, नाला, तालाब या जलाशय मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी में मुझे पानी पीना और कभी कभी पानी में बैठकर शरीर ठंडा करना पसंद है। ऊंची घास और झाड़ियाँ मुझे छिपने में मदद करती हैं। मैं शिकार करते समय धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ता हूँ, इसलिए मुझे ढकाव चाहिए। खुले और सूखे मैदान में मेरे लिए शिकार करना कठिन हो सकता है। मुझे ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ मनुष्यों का शोर और दखल कम हो। साथियों, जैसे आपको घर में अपना कमरा, खाना और पानी चाहिए, वैसे ही मुझे भी जंगल में सुरक्षित क्षेत्र चाहिए। यदि जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो मेरा चलना, शिकार करना और परिवार बढ़ाना कठिन हो जाता है। इसीलिए मेरे रहने की जगह में पानी बहुत जरूरी है। गर्मियों में जल स्रोत सूख जाए तो केवल बाघ ही नहीं, हिरण, पक्षी, बंदर और अनेक जीव परेशान होते हैं। जंगल में पानी बचाना इसलिए संरक्षण का बड़ा हिस्सा है। तालाबों और नदियों को साफ रखना, जंगल में आग ना लगने देना और प्राकृतिक रास्तों को बंद ना करना मेरे घर को सुरक्षित बनाते हैं।
3: प्रकृति में जैव विविधता ही हमारी पहचान।
1: स्वच्छ जंगल, नदियाँ, वन्य जीव जंतु और हरी भरी धरती हमारी शान।
4: हर छोटे बड़े जीव, कीड़े, पौधे और पारिस्थितिक तंत्र का अनूठा संतुलन ही जैव विविधता है।
1: जैव विविधता को सहेजे, समृद्ध भविष्य बनाए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा जनहित में जारी। बाग जी, आज आपके सामने भी तो कुछ खतरे हैं, वो बड़े खतरे क्या हैं?
2: आज मेरे सामने सबसे बड़े खतरे हैं जंगलों का कम होना, अवैध शिकार और इंसानों से बढ़ता टकराव। जब जंगल काटे जाते हैं या सड़कों और बस्तियों में से टुकड़ों में बट जाते हैं तो मेरे लिए सुरक्षित क्षेत्र कम हो जाता है, मेरे शिकार जानवर भी कम हो जाते हैं। तब कभी कभी बाघ भोजन या रास्ते की तलाश में इंसानों के क्षेत्रों के पास पहुंच सकता है, जिससे दोनों के लिए खतरा बढ़ता है। अवैध शिकार भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि कुछ लोग लालच में वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में प्लास्टिक, आग, शोर और पानी के स्रोतों का सूखना भी समस्या है। साथियों, बाघ मजबूत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है उसे खतरा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा जीव भी अपने घर के बिना कमजोर हो जाता है, इसीलिए बाघ की रक्षा का पहला कदम जंगल की रक्षा है।

0: हम जानना चाहते हैं कि यदि आपका और आपके साथियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा?
1: अगर बाघ कम हो जाए या गायब हो जाए तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। शाकाहारी जानवरों की संख्या कई जगह बढ़ सकती है और वे बहुत अधिक पौधे खा सकते हैं, जिससे नई घास, छोटे पेड़ और झाड़ियाँ कम हो जाएंगी। जब पौधे कम होंगे तो मिट्टी खुली रह जाएगी, जिससे वह बारिश में बह सकती है। जंगल कमजोर होगा तो पानी रोकने और साफ हवा देने की उसकी क्षमता भी घटेगी। इसका असर केवल जानवरों पर ही नहीं, इंसानों पर भी पड़ेगा। जंगल नदियों और जल स्रोतों को बचाते हैं, हवा को साफ करते हैं और मौसम को संतुलित रखने में मदद करते हैं। बाघ एक छतरी की तरह है, अगर उसके लिए बड़ा जंगल सुरक्षित है तो उसके सारे हिरण, पक्षी, कीट, पेड़, नदी और अनेक जीव भी बचते हैं।
2: सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया।
0: अरे बाघ जी कहाँ चले, जाते जाते लोगों के लिए कुछ संदेश तो देकर जाइए।
1: मेरा संदेश है कि मुझे डर या नफरत की नजर से ना देखिए, मैं जंगल का रक्षक हूँ, विलेन नहीं। मैं अपने नियमों से जीता हूँ और इंसानों से दूर रहना पसंद करता हूँ। आप मेरे पास आने, मुझे खाना देने या फोटो के लिए परेशान करने की कोशिश ना करें। जंगल में जाएं तो गाइड और नियमों की बात मानें, कूड़ा ना फैलाएं और शांति बनाए रखें। जंगलों को बचाने के लिए

पेड़ लगाना, पानी के स्रोतों को साफ रखना और वन्य जीवों के रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है। साथियों, आप लोगों को बता सकते हैं कि बाघ केवल एक सुंदर जानवर नहीं बल्कि पूरे जंगल की सेहत का प्रतीक है। अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तो हवा, पानी, मिट्टी और जीवन भी सुरक्षित रहेंगे। मेरे लिए जगह छोड़िए, मैं जंगल को संतुलित रखने में अपना काम करता रहूंगा। आप बाघों की मदद सीधे जंगल जाकर नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी कर सकते। कागज और पानी बचाइए, क्योंकि पेड़ और पानी जंगल से जुड़े हुए हैं। वन्य जीवों की चीजों से बने सामान ना खरीदें और दूसरों को ऐसा ना करने को भी कहें। जंगलों के बारे में सही जानकारी पढ़ें और अफवाहों से बचें। जब बच्चे प्रकृति के पक्ष में बोलते हैं तो फिर बड़े भी सोचने लगते हैं। मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी मदद है जंगलों को सुरक्षित रखने की सोच को फैलाना।

0: आज कार्यक्रम में बाघ की भूमिका में थे पीयूष सिहारे। और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
1: जंगल से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम अजहर। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। मनोज यादव ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने। आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासू वास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची गोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द क

0: कथन अप्रिय परिपथ्य वचन झिडकारून एक आप्त तूच हरविला लंकेवर काळ कठीण आज फादला
1: सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: सुबोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर शरद बाघेला। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वास्थ्य सुविधाओं की। राज्य सरकार ने जावद सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों और सिंगोली के अस्पताल को 50 बिस्तरों का बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और नई स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नीमच में नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत साइकिल रैली से हुई। इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और अच्छी गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 30 जुलाई तक जिले भर में चलेगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिले में एक फैक्ट्री में करीब 200 कर्मचारियों ने नशा न करने की शपथ ली। कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का हिस्सा है। जिले में कम बारिश से किसान चिंतित हैं। अच्छी बारिश की कामना के लिए ग्रामीणों ने घास बावजी धाम पर पूजा और यज्ञ किया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। लोगों ने अच्छी फसल और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार कई परिवारों ने खुले स्थानों पर भोजन भी किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और गांव के लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं। आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानी वेणीराम पाटीदार का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने गॉड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीमच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के स्वागत में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शहर देर रात तक भक्ति के रंग में डूबा रहा। स्वामी कैलाशानंद गिरी विशेष विमान से नीमच पहुंचे। उनके सम्मान में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। जिले में रेडक्रॉस भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां, चश्मे और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। नीमच जिले में फूलपुरा गांव में किसान प्रकाश खुमार दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई। इससे खेती की लागत घटी और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। अब वे जैविक खाद खुद तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे फसल की गुणवत्ता भी सुधरी है। आसपास के किसान भी अब इस खेती के तरीके में रुचि दिखा रहे हैं। फादर डे पर जीरन पुलिस ने एक बुजुर्ग पिता को उनके घर वापस दिलाने में मदद की। बेटे और बहू से विवाद के बाद बुजुर्ग लंबे समय तक आश्रमों में रह रहे थे। गांव लौटने पर भी उन्हें घर में नहीं रहने दिया गया। पुलिस के समझाने के बाद परिवार में सुलह कराई गई और बेटे ने अपनी गलती मानी। इसके बाद बुजुर्ग को सम्मान के साथ उनके घर में वापस रहने की व्यवस्था कराई गई। जावद के अठाना और डिकेन में मुहर्रम श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया। इस दौरान मजलिस और मातम का आयोजन हुआ। नीमच में अफीम नीति 2026-27 को लेकर किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में किसानों से 50 से ज्यादा सुझाव लिए गए। इन्हें अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नई नीति को किसान हितेशी और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के सुझाव नीति तैयार

प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका मकसद हादसे के बाद घायल लोगों को समय पर मदद पहुंचाना है। नीमच नगर पालिका ने शहर को हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाया है। जून महीने में शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 80,000 पौधे लगाए गए। अभियान की शुरुआत पर्यावरण दिवस पर हुई थी। इसके तहत पीपल, नीम, जामुन और आम जैसे पौधे लगाए गए। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति जयशेखर की।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुन लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार चार्ली भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक है, आनंद ले रहा है बरखा को। दुकान तो बैठे हैं, पानी गिर रहा है, तो तेज बारिश हो रही है।
0: पानी गिर रहा है आपके यहाँ?
1: हाँ।
0: सागर में तो पानी नहीं है।
1: अच्छा, आपको तो भगवान की देन है, देखो सर जहाँ ऐसा हो जाए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, देश की प्रगति में आप कैसे योगदान दे सकते हैं?
1: तरक्की में तो सर अपना बलिदान कर दे।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जब अपन को देश आजादी भाव तो अपन
0: हमारे साथ, हमारा आजाद देश है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ये है कि भाई हम इस देश की अक्षुण्णता को, एकता को बनाए रखें, और साथ ही हम अपने उन देशभक्त शहीदों को भी नमन करें, उनके परिवार को भी सम्मान दें जो सीमाओं पर डटे रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं। तो हमें ये बताएं कि कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अब गाना खराब पने देश के ऊपर से सुना दे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हाँ, मेरे देश की धरती।
0: बहुत ही बढ़िया, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर चार्ली भाई, फिल्म उपकार का ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: हेलो,
4: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आप। अपना शुभ नाम बताएं।
3: धर्मेंद्र लोधी बोल रहा, ग्राम खमरिया, जिला छतरपुर, तहसील बक्सवाहा। सर मैं दिव्यांग हूँ, आंखों से हीन हूँ। सर रेडियो में चलाता रहता हूँ सर।
4: तो रेडियो पे हमारा प्रसारण अच्छा मिलता है आपको?
3: जी सर, रेडियो पे बहुत अच्छा आता है। सुबह सुबह की जो बात आती है, विवरण है, फोन करें गीत सुने, फोन करें लोक गीत सुने,
4: सभी सुनते हैं आप।
3: बच्चों की हम सब रेडियो सर।
4: अच्छा, हमें ये बताएं धर्मेंद्र भाई कि जो देश पर हमारे वीर सैनिक बलिदान देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो उनके प्रति आपके मन में क्या भावना होती है?
3: सर मैं तो यही बोलूंगा सर कि अपने जो बलिदान देते हैं, सर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है,
4: हाँ हाँ,
3: जैसे खेती में किसान काम करता है,
4: हाँ हाँ,
3: तो अपना बलिदान देता है कि चलो पूरा देश का भरण पोषण करता है सर।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: सर। जैसे अपना कर्मचारी है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, निष्पक्ष अपना काम करे, जनता के हित में काम करेगा, जब ही राष्ट्र का भला होगा सर।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश के विकास के लिए हम सबका योगदान जरूरी है। आप
3: जी सर,
4: एक आम नागरिक का भी योगदान जरूरी है कि वो नियमों का पालन करें, जो
3: नियमों का पालन करें सर। हाँ। एक तो सर ऐसा है, मेरी रेडियो से बात जा रही, दुनिया सुन रही होगी, जो भी कर्मचारी है, सरकारी हो प्राइवेट हो, निष्पक्ष काम करेगा जब देश हित में काम करेगा।
4: लेकिन सैनिक हमारे रात दिन दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से वो जागते हैं, तभी हम सो पाते हैं।
3: जी सर,
4: तो उनका बलिदान तो अद्भुत है, अनूठा है, और हम चाहेंगे कि उनके लिए तो हम प्रणाम करें, और जब भी उनके परिवार का भी कोई सदस्य मिले या कोई सैनिक मिलता है हमें, अगर वो किसी संकट में है, तब हम उसकी मदद जरूर करें। अब बताएं कौन सा गाना सुनवाएं हम आपको?
3: फिल्म का नाम तो याद नहीं है। सावन का महीना पवन करे सूर, सर यही गाना सुनना है सर।
4: आइए हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म मिलन का ये गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: हेलो
4: सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत है आपका।
4: जी सर, हरीश चौरसिया तिली वार्ड से।
3: हरीश भाई, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। क्या हाल चाल है आपके?
4: सर बढ़िया है।
3: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हाँ हरीश भाई, हमें ये बताएं कि हमारे देश की प्रगति में कैसे योगदान हम दे सकते हैं।
4: सर ये पुलिस ऑफिसर लोग हैं या मिलिट्री वाले हैं, इनका सम्मान करना चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: हाँ, किसी को बिना मतलब की कोई सताना नहीं चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना चाहिए।
3: हाँ, अगर हम विनम्रता के साथ ही रह रहे हैं अपने देश में, अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं, लोगों से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों से बच रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है देश के लिए। और योगदान तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी बहुत किया है हमारे देश की आज़ादी के लिए। और आज जो हमारे सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं सीमाओं पर चहुं ओर रात दिन, उनका भी योगदान बहुत ज्यादा है,
4: उनका सम्मान करना चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताएं हरीश भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
4: देशभक्ति का कोई सा भी सुना दे, ये बॉर्डर का सुनवा।
3: बॉर्डर का कौन सा?
4: संदेश आते हैं।
3: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बॉर्डर का

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना?
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
2: हेलो सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करें गीत सुने में।
2: जी, अमित का चौक टैगरवाट खोराई से परमानंद बोल।
3: क्या हालचाल है परमानंद जी आपके?
2: अरे बरसात नहीं हो रही है, बड़े बेहाल है सभी के।
3: पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ सकता है।
2: ये बात तो सर, हमारे यहाँ खोराई विधानसभा में 1,00,000 पौधा का बना एक पेड़ माँ के नाम तहत वास्तव में लगाया गया। हमारे यहाँ टेंट लगा था जन सहयोग से, 1,00,000 पेड़ हुआ हम बिल्कुल लगाए गए।
3: तो बहुत ही बढ़िया
2: वगैरह। हाँ, उनको हाँ
3: ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये भी देश हित में दिया जाने वाला योगदान है।
2: जी जी जी।
3: अच्छा, देशभक्ति की बात होती है तो हम लगातार अपनी सीमाओं की तरफ देखते हैं कि सीमाओं पर वो रात दिन जाग कर पहरा देते हैं, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। आपका क्या कहना है हमारे उन सैनिकों के बारे में?
2: कहना तो ये है कि जी, उनको उनको मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए, देते हैं सब लोग।
3: बिल्कुल,
2: और
3: बिल्कुल।
2: उनको अपन सलाम करते हैं, उनकी उनका साहस, उनके साहस से, उनकी सुरक्षा से आज देश सुरक्षित है, अपन सुरक्षित, हर नागरिक सुरक्षित है। सर, वो क्रांति का फिल्म का गीत है जी, तो वो देशभक्ति गीत आप सुना दीजिए, क्रांति फिल्म का।
3: बहुत ही अच्छा लगा परमानंद जी आपके विचारों को जानकर कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों की सहायता भी करनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
0: जी नमस्कार सर।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: अशोक पटेल बोल रहा है सागर से।
1: अशोक भाई, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं सागर मकरोनिया में?
0: हमारा गड़ाकोटा के आगे गांव है, वहां हम खेती करते हैं और यहां हम अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए हैं।
1: बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, हमें ये बताएं,
0: लड़की है हमारी।
1: जी जी, देश के हित के लिए हर एक आदमी क्या कर सकता है?
0: अब देशभक्ति के लिए तो ये भी है सर, तो पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और ये भ्रष्टाचार है इसको भी अपन रोकें, अपने स्तर पर जितना अपन में समझ है, अपन में ज्ञान है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और साफ सफाई का भी ध्यान रखें, शहर में जो कचरा फैल रहा है उसको भी ना अपन फैलाएं।
1: बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये भी एक देश हित का काम है कि अगर हम अपने आसपास सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लोगों में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी काम हो जाता जो हमारे देश की छवि दुनिया भर में चमका के रख देता है।
0: जी जी, और जी असामाजिक तत्व हैं उन पे अपन सोसाइटी में भी रोक लगा सकते हैं सब लोग मिलकर के।
1: हाँ, और साथ ही हम हमेशा याद रखें उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, और साथ ही हम हमेशा सैल्यूट करें उन सैनिकों के लिए, उन वीर सैनिकों के लिए जो रात दिन पहरा देते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और अपना अपने परिवार से दूर रह के हमारे परिवार के साथ हम रह सकें इसके लिए वो मेहनत करते रहते हैं।
0: जी।
1: तो जब भी कभी कोई सैनिक मिले, अगर किसी की प्रकार की सहायता चाहता है तो आप लोग मदद जरूर करें।
0: जी हाँ, ये तो होना चाहिए, सब लोगों में होना चाहिए उनके भाव, श्रद्धा भाव।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं अशोक भाई, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: फिर देशभक्ति का वो कर्मा का सुना दो आप, दिल दिया है जान भी देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आइए अशोक भाई सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर फिल्म कर्मा का ये गीत।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत करते हैं आपका। अपना नाम बताएं।
0: सर जी राजू अहरवार भूतेश्वर। बस बढ़िया है सर, आपके सोमवार का दिन का इंतजार कर रहे थे, हमें कॉल करूं सर से बात करें।
1: बहुत ही अच्छी बात है, आप याद रखते हैं दिन को। और राजू भाई हमें ये बताएं कि हम अपने देश के विकास में, देश के हित में कैसे सहयोग कर सकते हैं और आप कैसे सहयोग करते हैं?
0: सर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कभी भी, उसकी देखभाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: जी। जैसे आप ये ट्रेन में जाते हैं तो कई प्रकार से गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, उसके जो सामान रहते हैं उसको अपन को सुरक्षा रखनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, अच्छा। और जब देश की आजादी की बात आती है तब आपको क्या क्या याद आता है?
0: वो तो अंदर से ही एक जुनून रहता है सर, एक अंदर से शांति मिलती है कि जो आज अपन है, जो हमारे बड़े बड़े जो महात्मा गांधी जैसे कई, इनको अपन याद करते हैं और अच्छा लगता है।
1: और जब वर्तमान में हमारी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बात होती है तब आपको क्या याद आता है?
0: जवान। हाँ सर, वो तो अपने अपने भारत का एक ही नारा है सर, जय जवान जय किसान। ये तो इनकी वजह से आज अपन सुख से सो पाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने राजू भाई
0: जी।
1: तो बता दें इनके लिए कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं आप? इससे पहले कि हम राजू भाई से उनकी फरमाइश पूछते, हमारा उनसे संपर्क टूट गया। और आइए हम सुनवाते हैं राजू भाई को आकाशवाणी की ओर से ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करने की सुने में।
1: जी नमस्कार सर,
0: अपना शुभ नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम नंद कुमार मिश्रा है।
0: नंद कुमार भाई, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, आरएमएस ऑफिस के पास से।
0: नंद कुमार जी, हमें बताएं क्या करते हैं आप?
1: पान की दुकान है साहब स्टेशन पे।
0: अच्छा अच्छा, हमें ये बताएं कि हम अपने देश के लिए एक साधारण व्यक्ति के तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं?
1: सर अब जन सुविधाएं जैसी बन पड़ती हैं तो हम लोग बैठे बैठे यहीं से करते रहते, कहीं जा तो पाते नहीं है।
0: हाँ, हाँ।
1: लगातार दुकान पे बैठना पड़ता है।
0: हाँ।
1: तो कहीं जा तो पाते, जन सुविधाओं के लिए जो कुछ अपन से बन पड़ता है अपन वो करते हैं। जैसे जनरली आप देख लीजिए,
0: हाँ,
1: आज के समय में पानी की बहुत सख्त जरूरत है, तो 4 बाटले पानी की भर के रखते हैं, उनको पानी पिलाते रहते हैं आदमियों को, जो चीजें कर पाते हैं और क्या करेंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे नंद कुमार जी, हम अपने तरीके से अपने देश के विकास में अगर थोड़ा सा भी सहयोग देते हैं, थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, तो वो योगदान बहुत ही अच्छा
1: है। जो बन पड़ता है वो तो करते हैं बराबर।
0: हाँ, और देखिए योगदान देने की बात आती है तो हम याद करते हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनका हमें नाम भी नहीं पता, जो गुमनामी के तौर पर अपना बलिदान देकर इस देश की आज़ादी के लिए और दूर चले गए, उनका नाम भी नहीं पता है। हम ऐसे बलिदानियों को भी नमन करते हैं, और नमन करते हैं हम उन सैनिकों का जो आज भी लगातार रात दिन अपने घर अपने परिवार को छोड़कर हम चैन की नींद सो सकें, इसलिए वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम उन सारे लोगों को याद करें, उनका नमन करें, और उनको जितना सहयोग हो सके वो जरूर करें। जरा सा भी अगर योगदान हम दे सकते हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार का नुकसान अगर पहुंचा रहा होता है, कहीं कोई देश के खिलाफ अगर कोई बात हो रही होती है, तो हम उसमें जाकर देश की रक्षा की बात जरूर करें।
1: जी।
0: तो नंद कुमार भाई बताएं कौन सा गाना सुनवाएं हम आपको?
1: गाना सुनेंगे सर, देशभक्ति का गीत हो सर सुनाइए आप।
0: और आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
2: देख

0: अपने।
1: और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है देश की सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में अपना सहयोग दें, यही होगी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम।

फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विनोद यादव ने, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति थी जयशेखर की, संयोजन था सुव्रता यादव का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
5: कहाँ
4: एडमिशन कराने हैं?
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें।

मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी

स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति
और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर
सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3

0: सखायः मम विश्वासः अस्ति यत् एतत् श्रुत्वा भवतां मनः अत्यन्तम् आनन्दितम् अभवत्। देवबर्मा महोदये मम महान् गौरवः अस्ति। पारम्परिकसङ्गीतस्य लोकप्रियीकरणाय तस्य प्रयासः नितरां प्रशंसनीयः अस्ति। मम भवद्भ्यः निवेदनमस्ति यत् भवन्तः अपि स्वसमीपवर्तिनां पारम्परिकवाद्ययन्त्राणां विषये सूचनां सामाजिकपटलेषु अवश्यं वितरन्तु। भवताम् एषः प्रयत्नः अन्यानपि अवश्यमेव पारम्परिकेन भारतीयसङ्गीतेन साकं सम्बद्धान् करिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, श्वः जुलाई मासस्य 27 दिने भारतरत्न सम्मानेन विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य पुण्यतिथिः अस्ति। डॉक्टर कलाम महोदयस्य व्यक्तित्वे अनेके प्रेरणादायकाः आयामाः आसन्, किन्तु तस्य हृदयस्य सर्वाधिकं समीपे एकस्य शिक्षकस्य भूमिका आसीत्। सः बालकान् यूनश्च महतः स्वप्नान् द्रष्टुं प्रेरयति स्म। संयोगवशात् अस्मिन् एव सप्ताहे वयं गुरुपूर्णिमा इति पवित्रं पर्व समाचरिष्यामः। अस्माकं माता पितरौ अस्माकं प्रथमौ गुरु स्तः। विद्यालयस्य आचार्याः अस्मभ्यम् अक्षरज्ञानं प्रददति। गुरुपूर्णिमा सर्वेषाम् एतेषां गुरूणां कृते कृतज्ञतां प्रकटयितुं महदवसरः अस्ति। अहं देशस्य सर्वान् आचार्यान् गुरुजनांश्च सश्रद्धं सादरं प्रणमामि। सखायः, कतिपय सप्ताहानन्तरं वयं स्वातन्त्र्यस्य महापर्व अपि समाचरिष्यामः। अगस्ट मासस्य 15 दिवसः प्रत्येकं भारतीयस्य कृते गौरवस्य दिवसः अस्ति। अयं तेषाम् असंख्यानां वीराणां स्मरणस्य दिवसः अस्ति, यैः भारत मातुः स्वातन्त्र्यार्थं स्वस्य सर्वस्वं समर्पितम्। तेषां त्यागेन तपसा च अद्य अस्माकं हस्ते त्रिरङ्गध्वजः अस्ति। अस्मिन् त्रिरङ्गध्वजे अस्माकं संविधानस्य आदर्शाः निहिताः सन्ति। सखायः, विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु हर घर तिरङ्गा अभियानेन समग्रः देशः अद्भुततया भावनया सम्बद्धः अभवत्। प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रत्येकस्यां वीथ्यां च त्रिरङ्गध्वजस्य उत्सवः दृश्यते। अस्मिन् वर्षेपि अस्माभिः हर घर तिरङ्गा अभियानं सम्पूर्णेन उत्साहेन अग्रे नेतव्यम्। स्वगृहे पूर्ण सम्मानेन त्रिरङ्गध्वजः आरोहणीयः। सखायः, प्रतिवर्षं ऑगस्ट मासस्य 15 दिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति। अस्मिन् वर्षेपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु। अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि। सखायः, अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव। आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः। देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत्पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु। भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभि आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह की CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की अनहार सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या? अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ भाव होते हैं। उन शब्दों से आपको चुनने होते हैं गाने और उन भावों से लिखनी होती है आपको टिप्पणी। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा दें। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए ख़ास तौर से, जो लोग जुड़ चुके हैं तो इन शब्दों को तो चुने ही, गानों को तो चुने ही, लेकिन इनमें जो भाव छुपे हैं, जो सवाल छिपे हैं, इससे जुड़ी हुई बातें भी साझा करें। जिंदगी एक रोज़ कान में कह गई एक बात, ये आज की इबारत है जो पढ़ रही हूँ। जिंदगी एक रोज़ कान में कह गई एक बात, प्यार वो वृक्ष है जहाँ धूप छांव दोनों होते हैं। बताइए अब धूप छांव वाले गाने। गम की कड़ी धूप में कहती है जिंदगी, हाय वो दिन कहाँ गए, वापस क्यों ना आए। इस पर तो बहुत सारे गाने होंगे। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी, दुनिया एक मेला है, यहाँ हर चेहरा अपना नहीं होता, न मिले फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। फिर एक रोज़ जिंदगी कान में आकर धीरे से बोली, हर किसी की मोहब्बत में वफा नहीं होती, लेकिन बेवफाई का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। फिर एक रोज़ जिंदगी मुस्कुराई और बोली, लिखो एक खत और वादा करो। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले पूरे करने हैं अपने सारे ख्वाब, नींद में देखे सपने भले कहाँ पूरे होते हैं, भला कहाँ पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं उनके जिनमें होता है हौसला, और फूलों से भी घर बना लेते हैं। फिर जिंदगी आखिरी बात ये बोली कि शिकायतें कम करो, सफ़र से मोहब्बत करो, जो राह चुनी है उसी पर चलते जाना। तो अब तो मुझे लगता है पढ़ने के बाद आपके जहन में बहुत सारे गाने कौंध रहे होंगे। कौन से वो गाने हैं जो इस वक्त कौंधे हैं, लिखिए ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे वहां, और साथ में हमारी बातें और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। यहाँ आज एक शब्द आया है मेला, तो ज़रा बताइए कि मेले से जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में आए हैं, और आप ये भी बताइए कि मेला देखने आप पिछली बार कब गए थे और मेले से जुड़ी हुई कौन सी याद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मेला वाला गाना यहाँ सुनाएंगे, जी नहीं, आप मेले वाले गाने चुनिए। अगर बहुत सारे श्रोता कोई अच्छा सा गाना चुन लाएंगे तो हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, फिल्म साथ साथ। पहली लाइन में ये शब्द कहीं आता है इस गाने से जुड़ा हुआ, जरा बूझिए और बताइए। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम भी आपको पूछने हैं। तो आज आपको पूरे सफ़र में सुरीला सफ़र के साथ रहना है, और बीच बीच में जो सवाल हम पूछते जाएंगे उसके जवाब भी देने हैं आपको। हीरो हीरोइन का नाम फिलहाल बूझिए।

साथ साथ फिल्म की ये गज़ल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ें थी, जावेद अख्तर के बोल थे और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत के पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छाँव होती है परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छाँव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है और दुनिया का मेला, मेले में लड़की और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज़ में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हमसफ़र हो तो ज़िंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। ज़रा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए। हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको बूझना है कौन हीरोइन कौन हीरो, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का एकालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियाँ आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना, ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है। वक्त कितनी तेज़ी से बदल जाता है लेकिन शहर और वहाँ के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो ज़रा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है, मेले में कौन सी चीज़ आप जाकर ख़रीदा करते थे, क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो ख़रीदते थे, और खिलौने मिट्टी के लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया, और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया, और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थाम कर, माँ की उंगली थाम कर मेले में आप घुमा करते थे, और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, अगर आपने टिप्पणियाँ भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शकील बदावनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था। और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मज़ा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के ज़माने में ख़ास तौर से ये एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज़ जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया, शाम को जाकर पुनः उसी जगह माताजी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मज़ा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और बिल्कुल दिल मुंह में चला है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊँचाई वाला झूला ज़रूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन

ज़रूर मैं ख़रीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फ़ोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक ज़माना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना। बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है, इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, ज़रा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है ज़रा हम बता दें। ज़िंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफ़र की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफ़र में शिकायतें कम और मुस्कानें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियाँ याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो ज़रा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्यौहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज़ खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप ज़रा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतज़ार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो ज़रूर बता सकते हैं।

और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहाँ विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है। कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल है जो चलती है, तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव। लेकिन वो जो असली मेला लगता था खुले मैदान में, बहुत सारी चीज़ें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़ कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज़ हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की ख़रीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है? वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे हैं। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको बूझना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था

0: लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरे जिंदगी का हिसाब देखता हूँ तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी, और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी, हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था, और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं, और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ चलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।
1: मिले न फूल तो कांटों से

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफ़े आज़मी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। ज़रा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स, पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें, हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफ़र का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफ़र इतना ही।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज यानी 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में देश इस महान दिन की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। तो आइए श्रोताओं, हम भी इस विजय को मनाएं।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद 23 मार्च 1931। फिल्म का ये गीत स्वर थे उदित नारायण, भूपेंद्र सिंह और वीर राजेंद्र के। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत था आनंद राज आनंद का। लीजिए अब कार्यक्रम में अगला गीत पेश है कारगिल विजय दिवस पर।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं तथा बावड़ियों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। अब भूजल पुनर्भरण के लिए बोरवेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तालाबों और अमृत सरोवरों को मिले नए जीवन पर कहा,
1: साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगर इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। हाल की बारिश से

0: पारंपरिक मार्ग को हुए नुकसान के कारण आज जम्मू से अनंतनाग जिले के पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परम्परा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को नमन करता है जिनके असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को संभव बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री यादव अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुल 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 4 इंच या इससे अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत

0: रात में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
0: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर

0: से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता से।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Ah, você?

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मान्यवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगत गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल की। श्री गंगानगर से दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला अश्विनी रमेश आनंद अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव। अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना डांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: रुको, बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा जाता।
2: जोर से नहीं हंसा जाता।
0: सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरी दोस्त तुम किस सोच में पड़ गए?

0: क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
1: ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीटती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
0: हाँ, मैंने भी सुनी।
1: आखिर वो किसको बुलाता है?
0: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
2: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
0: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
3: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
0: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
4: हाँ, ये तो है।
3: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
3: बेचारे,
4: कोई डॉक्टर की मांग नहीं करो।

0: ओ गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओ, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओ, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा समीर

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ, कुछ नहीं,
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज। फौजिया,
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
0: फौजिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं,

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा। रुक जा, अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा, बाजा, रुक जा।

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सोहेल साहब आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे क्यों?
0: हाँ।
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे?
0: तो तुम नहीं मानोगे तो लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
2: अरे ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहैल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ, देख देख मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन? नीलम?
2: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: आ, मेरे बच्चे, वो सोहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
3: मेरा आखिरी सलाम
0: फौजिया।
3: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजिया,
3: अब मैं

0: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
1: Oh, my God.

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी अभी
0: औसी, मेरी बच्ची।
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी जी, वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं,
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती है।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अभी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अभी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची।

प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मज़ा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविज़न की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविज़न नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलकाजी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलकाजी साहब फिर आगे वहाँ रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्यद्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंचवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे के। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज़ के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज़ में ख़त्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं

0: अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
0: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
0: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे, और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके, 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुनाह तो था ही, हाँ। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे, तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फलां दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई, मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
3: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मज़े की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मज़े से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी किया था उसको लेके?
1: नहीं, टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया हाँ। और लेकिन मज़े की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गज़ब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पाँच छः दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का,
0: हाँ
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल,
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया मराठी नाटक पंजाबी में होने लगा। यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
0: जहाँ तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं, वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन, जी
1: हाँ, डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया। और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग,
1: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान, दस्तक

0: की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेके एक फिल्म लॉन्च हुई थी संगत,
0: किसकी?
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं, उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका हीरो था
1: जी,
0: हाँ राकेश।
1: बाद में बाशु दा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं,
0: वो नहीं, नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
1: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
0: नहीं नहीं,
1: अच्छा।
0: मेरे क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोज़ाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुल देशपांडे।
1: वाह वाह वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली ये, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि प्यूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे ज़रा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है, ये हाँ, ख्वाब भी नहीं था,
0: ख्वाब भी नहीं था,
1: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली,
0: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए
1: जी।
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा, जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात हाँ है, वाह वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 magic years इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने ज़रूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मज़ा भी बहुत आया।
1: वहाँ आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता
0: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं
1: हाँ,
0: टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह, और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी और बिल्कुल वो मज़े से उसका चल रहा था और इट वॉज वंडरफुल। ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा, तो इट वॉज़ वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक दस छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया और हाँ मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह
1: जी,
0: से
1: जी। हाँ, पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया।
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड पेंटेड पोस्टर्स,
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सका, पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जब मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना, तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात,
0: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहाँ सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी।
1: वाह,
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मो, पूरी गायब हो गई,
1: पूरी
0: कॉम ही गायब हो गई,
1: है ना। एमएफ हुसैन मिले थे,
0: हाँ हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू मुझसे ज्यादा आपको मालूम है क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर,
1: महाराष्ट्र में बड़ी परंपरा थी,
0: हो हो जी। तोबा तोबा, मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो बहुत खुशी से वो हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था, तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की, अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको तोलो तो ये नाराज वाला जो
0: नहीं, वो कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम बड़े चाओ से,

0: तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहाँ से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को।
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज पलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म। वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज़, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए ज़रूरी है, ये फिल्मों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राज़ी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ,
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे। और खरजदार आवाज,
0: हाँ
1: रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के
0: माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले, हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो। और दीदी पास सुन रही होंगी, तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया। और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देख के हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह
0: वैसे
1: वाह,
0: क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये कर, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं,
1: हाँ,
0: हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा जा, नहीं
1: अरे
0: पंकज
1: बाप
0: उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये, तो अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे
0: मैंने
1: मनाया
0: कहा नहीं
1: जाता
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलां का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में
1: है?
0: कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को मनाया आपने।
0: हेमंत कुमार बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओहो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना पंकज
1: जी
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है शायद,
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू।
1: आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म, टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स have the same connection with the music director, which is again not true for Asha and Lata as far as I know, and so on and so forth. There are so many differences. In fact, in the film, the older sister herself, Aruna Irani, dies, you know, in the film. So again, and Lata ji was with us for a long, long time. So there was nothing, really nothing. It was not at all
0: biographical
1: film. नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
0: पर जाकिर साहब को कैसे राजी किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had four music directors.
0: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
1: Yeah, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेंद्र हजारिका,
0: जी
1: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक, एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So, Saaz didn't have a theatre.
0: अरे अरे अरे।
1: Television पे दिखाई।
0: जी जी जी।
1: तो ऐसा ऐसा हुआ। So bad luck all the way. So it's not been a जो एक happy ये होता है ना experience, तो unfortunately Saaz was not a happy experience for me.
0: जी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
1: हूँ। अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
0: जी, तो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फ़ोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन कहा कि ये शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहाँ ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मज़े का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे, वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी, तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, वो हवा में नहीं लिखा जाता, लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई, या संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको

0: बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर, उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूँ कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
1: फिर
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा, आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं, 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुमके प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर would not make a good couple, you know? तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना was thrilled to bits, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नज़र आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने

0: नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियाँ और जो उसमें से जो सटल चीज़ें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं कब आऊँ, तुम कब फारिग हो और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मेरे
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे।
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा,
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकिस।
0: बार्किस। और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पिगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी, हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब
1: वाओ।
0: बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है, क्या है, हाँ। तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का,
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है, हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे ज़रूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुँचे और उनका हमारे पहले ही पहुँचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर लिया, ऐसा नहीं नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो डाली। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है,
0: जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है।
0: यस, एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी हाँ,
0: फिरोज रंगूनवाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वुड गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से, कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहते हैं मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, she was a very good friend of Basu's, और हमारे फिल्म को unfortunately कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई। सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी जान,
1: मेरी जान मुझे जान कहो,
0: क्या बात है, कनू रॉय। अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से चल रहे इस विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। एक पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। साथियों, आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय जिन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की बात में हमारा आज का विषय रहेगा कारगिल विजय दिवस। सोशल साइट्स का उपयोग कितना लाभकारी और कितना हानिकारक पर होगी चर्चा। जीवन आलोक का हमारा आज का विषय रहेगा पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे कदम बढ़ाएं। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत सुनेंगे जरूरी जानकारी। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए होंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के विशेष उपलक्ष कारगिल विजय दिवस पर जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय और देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान तथा देशभक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सन 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कठिन परिस्थितियों में साहसपूर्वक युद्ध लड़ा और 26 जुलाई 1999 को सभी महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः तिरंगा फहराया। यह विजय भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर युद्ध लड़ा। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे था, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार तथा अन्य अनेक वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत पराक्रम से पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उनकी वीरता आज भी प्रत्येक भारतीय को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। कारगिल के वीर सैनिकों का जीवन हम युवाओं को यह सिखाता है कि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए तथा सेना बलों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस केवल एक विजय का उत्सव नहीं, बल्कि उन अमर वीरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की। हमें उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार, अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं सोशल मीडिया का उपयोग कितना लाभकारी कितना हानिकारक। दोस्तों आज का युग इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का युग है। सोशल साइट्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक या गलत उपयोग कई समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि सोशल साइट्स का उपयोग कितना सही है और कितना गलत। साथियों सोशल साइट्स का सही और संतुलित उपयोग अनेक प्रकार से लाभदायक है। इनके माध्यम से हम देश दुनिया की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शैक्षणिक सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। व्यवसायी अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। परिवार और मित्र चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनसे आसानी से संपर्क बनाए रख सकते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने, प्रतिभा दिखाने और नए कौशल सीखने में भी सोशल साइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां सोशल साइट्स के अनेक लाभ हैं, वहीं इनके दुष्प्रभाव भी कम नहीं हैं। इनका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी करता है और पढ़ाई तथा काम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई लोग झूठी खबरें,

अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा होता है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी अकाउंट, निजी जानकारी की चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक तनाव, अकेलेपन और मोबाइल की लत का कारण बन सकता है। सोशल साइट्स का उपयोग सीमित समय तक करना चाहिए। किसी भी समाचार पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और सकारात्मक तथा उपयोगी सामग्री ही साझा करनी चाहिए। सोशल साइट्स ना तो पूरी तरह अच्छी है और ना ही पूरी तरह बुरी। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम सोशल साइट्स का उपयोग संयम, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें तो वे शिक्षा, ज्ञान, रोजगार और संचार का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इसीलिए हमें सोशल साइट्स का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि हमें उनके लाभ प्राप्त हों और हानियों से हम बच सकें। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीवन आलोक के हमारे आज के विषय की। दोस्तों, जीवन एक निरंतर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। गलतियां करना असफलता नहीं है, बल्कि उनसे कुछ ना सीखना वास्तविक असफलता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए हमें पुरानी गलतियों को याद करके पछताना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। गलतियां हमें हमारे अनुभवों से परिचित कराती हैं। वे बताती हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। यदि हम अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो भविष्य में वही गलती दोबारा करने से बच सकते हैं। महान वैज्ञानिकों, नेताओं और सफल व्यक्तियों ने भी अनेक बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर नई शुरुआत की और अंततः सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक है। उसके बाद उसके कारणों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। समय का सदुपयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयास भी सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में भी गलतियां होना स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आना, पढ़ाई में लापरवाही करना या समय का सही उपयोग न करना जैसी गलतियों से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। नियमित अध्ययन, अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से सफलता अवश्य मिलती है। पुरानी गलतियां हमारे जीवन की शिक्षक होती हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। हमें बीतते हुए समय पर पछताने के बजाय वर्तमान में मेहनत करनी चाहिए और भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता और प्रगति का मार्ग है। साथियों, समय हो गया है एक और गीत सुनने का।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है,
1: मैं सागर हूँ।
2: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
2: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा श्रीवास्तव, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी श्रोताओं का स्नेहल अभिवादन करती हूँ। जब भी सागर शहर का नाम आता है, मन में एक ऐसे शहर की छवि उभरती है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, शैक्षणिक पहचान, प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर केवल मानचित्र पर अंकित एक स्थान नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की भावनाओं, सपनों और विश्वास का केंद्र है। किसी भी शहर की असली पहचान वहां रहने वाले लोगों और उनके जीवन की गुणवत्ता से होती है। यह सुखद है कि आज सागर निरंतर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। नगर निगम प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से शहर के स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज का पहला परिचय होती है। आज शहर में नियमित सफाई व्यवस्था, घर घर से कचरा संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और लोगों की बढ़ती जागरूकता ने शहर को अधिक साफ सुथरा और सुंदर बनाया है। जब हम अपने आसपास स्वच्छ वातावरण को देखते हैं, तो मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल जीवन का आधार है। बढ़ती आबादी और बदलती परिस्थितियों के बीच प्रत्येक नागरिक तक पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों ने जल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। इसके साथ ही जल संरक्षण का संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब हम आज पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे। सागर के पार्क और उद्यान आज केवल हरियाली के प्रतीक नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन के केंद्र बन चुके हैं। जीवन की ताजी हवा में टहलते वरिष्ठ जन, खेलते हुए बच्चे, योग और व्यायाम करते हुए युवा, यह दृश्य किसी भी शहर की जीवंतता का परिचायक होता है। हरियाली बढ़ाने और उद्यानों के उन्नयन ने शहर की सुंदरता में नया आयाम जोड़ा है। बेहतर सड़कें विकास की रफ्तार को गति देती हैं। आज सागर की अनेक सड़कें अधिक व्यवस्थित और सुगम दिखाई देती हैं। प्रमुख चौराहों का सौंदर्यकरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, यातायात सुविधाओं में सुधार ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। एक व्यवस्थित शहर अपने आप में एक अनुशासन और प्रगति का संदेश देता है। सागर शिक्षा की नगरी के रूप में पूरे प्रदेश अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, शोध और नवाचार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और सागर की पहचान को और व्यापक बनाते हैं। सागर की सबसे बड़ी शक्ति उसके नागरिक हैं। जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तब विकास की गति और तेज हो जाती है। यदि हम सड़क पर कचरा न फैलाएं, पानी की बचत करें, पौधे लगाएं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, तो हमारा शहर और भी सुंदर बन सकता है। हम सभी का यह दायित्व है कि विकास के इस सफर में सहभागी बने, क्योंकि शहर केवल सरकार या नगर निगम के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जागरूकता और सहभागिता से आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि सागर को स्वच्छ, हरित, सुंदर और व्यवस्थित और आदर्श शहर बनाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब तक इस शहर को देखें तो उन्हें एक ऐसा सागर मिले जिस पर हर नागरिक गर्व कर सके। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
0: आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ तो मौजूद हैं नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री जी। सागर में बहुत सारे बदलाव आए।
6: पहले मैं जो है आपको शौचालय के बारे में जो है बताना चाहूंगा। बेसिकली यहाँ मेरे आम नागरिकों से इस बात अपेक्षा भी है और अपील भी है कि जो आपकी शासकीय जो भी संसाधन है या प्रसाधन है वो आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, और जैसे घर में अपनी चीजों का उपयोग करते हैं उसी तरीके से साफ सफाई और उनकी सुरक्षा दोनों का आप लोग बेहतर उपयोग करें। चूंकि बाहर से आने वाले लोग भी उनका उपयोग करते हैं और आप लोग भी उसका उपयोग करते हैं, नगर निगम के द्वारा उनकी लगातार जो है सफाई की जाती है, बट कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग उसमें लापरवाही बरतते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा नगर निगम और शहर की छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगता है। उस दिशा में हम आम नागरिकों को हमने काफी जागरूक किया है और अब उन चीजों में काफी हद तक हैबिट्स में सुधार हुआ है। दूसरा बड़ा पार्ट है हमारे जो येलो स्पॉट, रेड स्पॉट और ब्लैक स्पॉट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि येलो स्पॉट हमारे वो स्पॉट होते हैं जो सामान्यतः लोग यूरिनल वगैरह करते हैं और उसके बाद वहां पर जो येलो स्पॉट जो है क्रिएट हो जाते हैं, तो वो उनको हम लोग लगातार रिमूव कर रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए समझा दी जा रही है कि जो यूरिनल बने हुए हैं या जो टॉयलेट्स बने हैं या सामुदायिक शौचालय बने हैं उनका उपयोग करें, खुले में यूरिनल ना करें। रेड स्पॉट को लेकर चूंकि खासकर सागर में आपने देखा होगा पान खाने की प्रथा काफी है, तो हम इस पे हमने जोर दिया है कि लोग अपने पीक दान रखें। खासकर इसको लेकर हमने ऑटो वालों के साथ एक MOU हम लोग उन लोगों के साथ करने वाले हैं, पान वालों के पास भी जाके हमने एक इस बात को समझाया है और इसको एक हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी लाया है नगर मित्र का। नगर मित्र का मतलब जो सागर की साफ सफाई में जो योगदान देते हैं तो वो लोग अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं। ब्लैक स्पॉट ऐसे स्थान थे जो बरसों से जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जहां पर सफाई नहीं होती थी और देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, ऐसे सारे स्थानों को लगभग अच्छे खूबसूरत स्पॉट के रूप में सागर नगर निगम के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है और एक सतत प्रक्रिया है, आगे भी हम इस दिशा में प्रयास करेंगे।
0: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
4: और नासिर को।
0: नमस्कार।
4: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
2: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
2: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से। कलाम है मुजफ्फर वारसी का।

0: दीप, तुम्हें ऐसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज करो।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: सुन बुद्धू, सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है,
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
5: तो मिलेगी ना?
4: पर कैसे?
5: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
6: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम है संगीत सरिता और श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी गजल आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में, और इस गजल को लिखा है नौशाद ने। इस गजल को हमने लिया है एल्बम दिल की आवाज से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना जिसे गाया है उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है मन।
3: नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सदाबहार गीत का। श्रोताओं, आज 26 जुलाई का दिन भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने और ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले वीर सैनिकों के बलिदान को समर्पित है आज का दिन। तो आज कार्यक्रम सदाबहार गीत में कुछ गीत देशभक्ति के। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदमी और इंसान फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, एस बलबीर और साथियों की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में। आगे आगे हम चले यारों की बरातों में, यारों की बरातों में। हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में।

आदमी और इंसान फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर, एस बलबीर और साथियों की आवाज़ों में। और आइए कार्यक्रम सदाबहार गीत में अब आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म पूरब और पश्चिम से।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत, और श्रोताओं अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जिगरी दोस्त फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जिगरी दोस्त फिल्म का गीत सुना। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा का गाया हुआ। आइए सुनते हैं ये चेतावनी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौटाए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग में अब आपको सुनवाते हैं काशीराम अहिरवार का गाया हुआ ये वर्षा गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
4: तो मिलेगी ना।
3: पर कैसे?
4: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
5: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम है लोक रंग, और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये हास्य गीत, स्वर है रामनाथ अहिरवार का।

रामनाथ अहिरवार के गाए इस हास्य गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाई

0: छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बनिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की और हमारी कल की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:20 से आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। डगर विकास की आज इस कार्यक्रम का विषय होगा स्टार्टअप इंडिया योजना और यह आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। प्रसारण समय है रात 8:15 का। इसे भी हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:30 से। रात्रि 8:45 से समाचार संध्या का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत हम लेकर आएंगे रात 9 से। और रात्रि 9:30 से आप सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। और आइए अब जानकारी लेते हैं हमारे कल के कार्यक्रमों की। कल 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का

कार्यक्रम अर्चना। 6:30 से आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। कल इसका 61वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर होगा महेंद्र कपूर का। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह होगा सुबह 7 बजे से। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि संकेत। कल का विषय होगा थनेला रोग से बचाव और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बी के शर्मा। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 से। सुबह 7:45 पर आप सुन सकते हैं गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 पर। कल सुबह 8:30 से महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन सकती हैं बिंदिया। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुबह 9:50 पर कल आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। 10:05 से 11 बजे तक होगा फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। और 11 बजे से आप सुन सकते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। कल शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 से होगा कार्यक्रम संगीत सरिता और सदाबहार गीत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकते हैं कल शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर। कल शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे से। इसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत और संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत पेश किया जाएगा रात 9 बजे से। और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं। कल रात्रि 10 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रैली करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसके पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कल रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज की और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण अब होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
6: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
8: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो। क्या
8: आरबीआई कहता है?
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और

और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी में 193

0: असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने विक्रम 1 के लॉन्च होने को लेकर कहा कि
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।
0: प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि देश के लोग एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
1: मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है।
0: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रतिनिधिमंडल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने प्रशासनिक सुधारों पर सरकार द्वारा निरंतर ध्यान दिए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए यह बात कही। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी में लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन और 19 करोड़ 98 लाख की लागत से तैयार 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन सहित लगभग 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ की लागत से लगभग 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां गीता भवन और सांदीपनी विद्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा देगी। इसके माध्यम से निवाड़ी जिले के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा।
4: सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की और निवाड़ी में एक आपने का सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने फिर निर्णय किया, मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही। गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूँ।

0: महाविद्यालय और एमबीए भी खोलना चाहिए, तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और एमबीए भी खोला जाएगा।
1: कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनंदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की गई है। 500 से अधिक बंद पड़े बोरवेलों को पुनर्भरण शॉफ्ट में परिवर्तित किया गया है। 600 से अधिक इंजेक्शन कुओं को 1,700 से अधिक मिनी परकुलेशन टैंकों से जोड़ा गया है और 2,500 से अधिक जल निकायों को जियो टैग किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और शियर जोन सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में दो निम्न दबाव क्षेत्र भी बने हुए हैं। इन्हीं मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना अपर कलेक्टर न्यायालय राजस्व प्रशासन ने पूरे प्रदेश में प्रकरण डिस्पोजल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है। झाबुआ जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज ग्राम पंचायत खेड़ी नवापाड़ा में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम और नगर सुरक्षा समिति सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भाग लिया। आगरमालवा जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज ग्राम साबनी के पास सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बच्चों और महिलाओं सहित 6 अन्य घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी,
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। 7:21 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अमर सिंह यादव की आवाज में ये चेतावनी।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
2: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
3: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
4: बात बन जाए।
3: 287 मेरी चाय।
5: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
6: तो मिलेगी ना।
5: पर कैसे?
6: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
7: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग, और ये आखिरी लोकगीत है देवी गीत। स्वर है सुरेश चंद्र तिवारी का।

सुरेश चंद्र तिवारी के गाए इस देवी गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, और आप अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं सीधे फोन लगाकर स्टूडियो में। आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ उपस्थित है, डॉक्टर स्वप्निल दुबे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है। फोन नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिए 07552660902, और आप इन फोन नंबर पर हमें बात कर सकते हैं। समय याद रखिएगा 7:30 से 8 बजे के बीच, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है। तो तब तक आपके फोन आते हैं, तब तक हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम।
1: सभी किसान भाइयों को राम राम।
0: सर हम जैसा देख रहे हैं खरीफ फसलें अभी समय लगी हुई हैं और खरपतवार भी उनमें बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता बन गई है, तो अगर हम बात करें तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है?
1: खरीफ मौसम में हम देखते हैं कि खरपतवार की समस्या ज्यादा आती है, और यदि हम खरीफ फसल चाहे सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, धान सभी की बात करें, तो इसमें यदि हम खरपतवारों को नियंत्रण नहीं करते हैं तो इससे हमारी पैदावार में जो है उत्पादन में कमी आती है। लगभग 15 से 20% तक उत्पादन कम हो जाता है, और जैसा सभी किसान भाई जानते हैं जैसे ही हम फसल की बुआई करते हैं तो फसलों का अंकुरण कम से कम 5 से 7 दिन बाद होता है, जबकि खरपतवार पहले दिन से ही खेत में आ जाता है। और खरपतवार के खेत में आने से वो पानी के लिए, वो खाद के लिए, वो प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, और फसल और खरपतवार के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसलिए खरीफ की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण कम से कम 12 से 15 दिन 20 दिन की अवस्था जो रहती है बड़ी क्रांतिक होती है। इस समय खरपतवारों को नियंत्रण करना जो है बहुत आवश्यक है, और यदि खरपतवारों का नियंत्रण नहीं होता है तो फसल की बढ़वार कम होती है और उसके उत्पादन पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, और अच्छा उत्पादन मिले तो हमारे किसान भाई

0: सारी बहुत सारी जानकारियां भी चाहेंगे। सोयाबीन एक प्रमुख फसल है खरीफ की, और इसमें खरपतवार कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: खरीफ फसल या सोयाबीन की हम बात करें तो इसमें दो तरह के खरपतवार आते हैं। एक तो सकरी पत्ती का खरपतवार आता है, जिसको हम जो है दूब घास कहते हैं या मोथा कहते हैं, ये सकरी पत्ती में होते हैं। चौड़ी पत्ती में जो है हमारा पत्थर चटा है, कनकौआ है, दूधी है, वन मकोए है, सफ़ेद मुर्ग है, ये हमारे चौड़ी पत्ती। तो हमारे सोयाबीन की फसल में सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार आते हैं, और इनका नियंत्रण करना जो है बहुत आवश्यक होता है।
0: बिल्कुल, हम आपसे आगे भी चर्चा रखेंगे। और हमारे साथ हमारे पहले जो है वो कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो, हेलो ग्राम सभा, लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। तो हम बात कर रहे थे सोयाबीन की फसल में जी। हेलो ग्राम सभा, हेलो ग्राम सभा
2: जी। रानी जी, राम राम।
0: राम राम भैया, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ।
0: विपिन भैया कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे।
0: सागर का कैसा मौसम चल रहा है?
2: सागर का मौसम अभी तो मैम गर्मी हो रही है काफी, धूप भी निकलती है दिन में। तो
0: बारिश वारिश हो रही कि नहीं हो रही, आसार लग
2: नहीं? बारिश तो अभी तीन चार दिन से तो नहीं हुई, यहाँ थोड़ी बहुत परसों हुई थी शाम को दो पाँच मिनट के लिए, बाकी वैसी बारिश तो नहीं हो रही है।
0: चलिए, तो भाई आज क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरे दो सवाल थे, पहला आज सोयाबीन का विषय है तो सोयाबीन के बारे में भी जानना चाह रहा था, और एक सवाल ये था कि पहला मैं अरहर के बारे में जानना चाह रहा था कि अरहर की फसल के लिए खरपतवार नाशी कोई दवा हो तो उसके बारे में जानना था, और दूसरा सवाल ये था कि सोयाबीन में देखा जाता है कि पीलापन की समस्या होती है, अभी तो नहीं है लेकिन आगे चल के आने लगती है जब फसल एक डेढ़ महीने की होती है, तो उसके लिए हम पहले से क्या मतलब इंतजाम कर सकते हैं?
1: बहुत ही दोनों आपके विपिन कटारे जी, आपने जो प्रश्न पूछे बहुत ही समसामयिक है। तो पहली बात आपने करी कि अरहर की फसल में हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अरहर की फसल में लगभग 15 से 45 दिन की जो अवस्था होती है क्रांतिक होती है, इसमें हम जो है दो तरह के जो है खरपतवारों का नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। एक आता है एमेजे थपायर, जिसकी मात्रा 300 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं, या एमेजे थपायर प्लस प्रोपक्यूजाफाफ आता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ या 2 लीटर 2.5 एकड़ में। पर ध्यान ये रखें कि जब खरपतवार नाशक का छिड़काव करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो, 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी हो, इन दो बातों के साथ जो है हम इसका नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपने एक प्रश्न करा सोयाबीन में पीलापन, ये एक आम समस्या रहती है जिसको हम पीला रोग, पीला मोजेक, मोजेक वायरस रोग, येलो मोजेक के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारी सोयाबीन उड़द की फसल होती है इसमें कुछ पौधे की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, और जिस खेत में इसका प्रकोप होता है वहाँ पर सफ़ेद मक्खी भी रहती है, तो ये सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो यदि आपको लगता है आपके खेत में जो है कुछ पत्तियां या पौधे में पीलापन आ रहा है और सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी की दवा का यदि आप उपयोग करेंगे, जैसे थायोमिथाक्साम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन आता है या बीटासाइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोपिड आता है, तो दोनों में से कोई एक दवा का यदि छिड़काव करेंगे तो ये सफेद मक्खी आपकी आसानी से नियंत्रित हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हाँ जी जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
3: मैं ग्राम बड़ा गाँव, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
0: जी जी मांगी लाल जी, कैसा गुना का कैसा अभी मौसम है?
3: मौसम तो अच्छा है मैम।
0: क्या लगाया है खेत में इस समय?
3: मक्का लगाई मैम।
0: ठीक है, तो क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
3: मक्का के बारे में पूछ रहा था मैं
0: जी, बताएं।
1: हाँ पूछिए।
3: मैंने दवाई छिड़क दी आज, उसके बाद में कई दिन के बाद में जो चारा मर जाएगा, दवाई डाल दी मैंने।
1: मक्का की फसल में आपने दवाई का छिड़काव कर दिया है तो कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, जब कचरा पूर्णता जो है सूखने लगे एवं सूख जाए तो 4 से 5 दिन का समय लगेगा, तो आपको ये जो है खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएगा। कौन सी दवा का छिड़काव किया था आपने?
0: ठीक है, बिल्कुल। मतलब एक उत्सुकता होती है कि किस तरह से क्या है कि हमने इसका उपयोग किया है दवा का, तो वो किस तरह से
1: रिजल्ट मिलेगा,
0: रिजल्ट कब मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उत्सुकता हमारे किसान भाइयों के अंदर रहती है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाई भी सुनना जरूर चाहेंगे कि सोयाबीन में प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कीट हैं वो लगते हैं और उनका क्या प्रभाव

0: अब जो है वो बढ़ता है, इसका उत्तर हम आपसे लेंगे, लेकिन हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा।
1: हाँ जी,
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: नेत्राम खोजा बोल रहे जी, कोठिया।
0: क्या नेत्राम जी, कैसा मौसम है आपके यहाँ का, क्या स्थिति है?
1: मौसम तो अच्छा जी, मन में 5 एकड़ में सोयाबीन वो है।
0: तो क्या प्रश्न है आपका?
1: पत्तों में जी छेदा हो रहा है।
2: छेदा हो रहा है, झरझरा लग रहा है, और बताए
1: जी।
2: झरझरा लग रहा है, पत्ते काट रहा है।
1: हाँ जी हाँ।
2: और कोई समस्या?
1: और समस्या नहीं जी।
2: ठीक है, सोयाबीन में समय जो है पत्ते काटने वाला कीट का प्रकोप रहता है, जिसको किसानी भाषा में हम झरझरा कहते हैं और अपनी वैज्ञानिक भाषा में ब्लू बीटल कहते हैं, नीला भ्रंग कहते हैं। तो समय किसान भाई इसका ध्यान रखें, सुबह शाम खेतों में जाएं, निगरानी करें, और खेत में यदि ब्लू बीटल का प्रकोप दिख रहा है तो उसके लिए हम दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोफेनोफास आता है 50 cc, इसको हम उपयोग कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की दर से, या क्लोरपाइरीफास आता है 50 cc, इसको हम उपयोग कर सकते हैं 500 ml एकड़ की दर से, या एक और दवा आती है क्लोरेंटा नीलीप्रोल, ये भी बहुत अच्छी दवा है इसका। तो तीनों में से कोई एक दवा का यदि हम छिड़काव करेंगे तो ये जो पत्ती काटने वाला कीट है, ब्लू बीटल झरझरा है, ये आसानी से नियंत्रित हो जाएगा।
0: बिल्कुल, तो ये तो आपने एक कीट के बारे में बता दी, और जो नेत्राम जी ने पूछा था और कौन कौन से कीट हैं जो
2: सोयाबीन की फसल में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, फूल आने की अवस्था होगी तो समय गर्डल बीटल का प्रकोप आता है, आगे चल के सेमी लूपर का आता है, चने किल्ली का आता है, तम्बाकू किल्ली का आता है, तो ये इसके प्रमुख कीट होते हैं और इनकी निगरानी करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए किसान भाई सुबह शाम खेतों का निरीक्षण करें और देखें खेतों में कहीं इल्ली का प्रकोप तो नहीं है, और उपयुक्त जो है अनुशंसित दवा का उपयोग करें।
0: बिल्कुल, आपने बोला अनुशंसित दवा का उपयोग करना, ये कितना आवश्यक है? कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं हम ज्यादा दवा का उपयोग कर रहे हैं जल्दी उसका असर मिलेगा।
2: कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार जो है किसानों के द्वारा जो है 2 या 3 दवाइयों को मिला के उपयोग कर लिया जाता है, ये पूर्णतः गलत है। जो फसलों के लिए अनुशंसित दवा है उसी का हमको उपयोग करना है, उसकी अनुशंसित मात्रा और साथ में पानी की मात्रा भी कम से कम 150 लीटर रखना है। यदि हम उपयुक्त दवा, अनुशंसित दवा का सही तरीके से छिड़काव करेंगे तो कोई भी कीट हो, रोग हो, खरपतवार हो, उसका नियंत्रण बड़े आसानी से होगा।
0: बिल्कुल, ये आपने बताया कि आसानी से तो हो जाएगा, लेकिन अगर समन्वित कीट नियंत्रण करना है तो कैसे हमारे किसान?
2: समन्वित कीट नियंत्रण एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। जैसा हम देखते हैं किसान भाई कि केवल वो रसायनों का उपयोग करते हैं, तो केवल हमको रसायनों का उपयोग नहीं करना है, इसके लिए हम समन्वित कीट प्रबंधन की भी एक तकनीक होती है। तो इसमें हम पहले आती है टी आकार की खूंटी।
0: बिल्कुल, आपसे हम इस पे आगे भी उत्तर ले लेंगे। हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोले दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज भैया कैसे हैं?
3: बिल्कुल खूब है, खूब बढ़िया है दीदी, आपको आशीर्वाद कहानो भगवान की कृपा से।
0: भगवान की कृपा बनी रहे भैया। और ये बताओ कि काका लगाए हैं खेत में?
3: दीदी इस समय तो हमने मूंगफली लगाई है और उर्द मूंग भी है, सोयाबीन भी और मक्का भी है।
0: तो क्या प्रश्न है आज?
3: जी जी बहुत ही बढ़िया दीदी, प्रश्न हमारा ये है के सोयाबीन में खरपतवार ज्यादा होगा, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार बहुत ही देखने मिल रहा हो, और पाए तो बस नहीं रहा, अगर हम दवाई डाल है तो दवाई काम कर है कि नहीं कर है, 1% जो है, और खरपतवार मारने को कौन सो ऐसा दवाई है वो हम डाले तो मर जाए, सरसन जो पूछना चाहूँ।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छे आपके दोनों प्रश्न है। पहला तो जब भी हमको खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें तो ये ध्यान रखें खेत में नमी का होना आवश्यक है। खेत में यदि नमी नहीं होगी या 2-4 दिन से पानी नहीं गिरा होगा तो कोई भी दवा का रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये ध्यान रखें कि खेत में हल्की बारिश हो जाए, उसके बाद हम दवा डालें। और दूसरा आपने एक प्रश्न करा कि चौड़ी पत्ती के हमारे ज़्यादा खरपतवार हैं, तो उसके लिए एक दवाई आती है क्यूजोलोफाफिथाइल प्लस क्लोरीम्यूरान एथाइल करके दवाई आती है, 2 दवाइयाँ मिल के आती हैं, तो इसकी मात्रा रहेगी 375 ml 2.5 एकड़ में। तो इस दवा का यदि हम उपयोग करेंगे तो जो आपके चौड़ी पत्ती के हैं और यदि शकरी पत्ती भी होगी तो वो दोनों खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे?
4: जी मैं बोल रहा हूँ कमल कुमार सुमन, तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ से।
0: अच्छा, राजगढ़ से बोल रहे हैं। तो क्या प्रश्न है आज आपका?
4: जी जी, ये जो सोयाबीन में आपका जो ये खरपतवार से संबंधित,
2: हाँ
4: ये सर, ये जैसे कि अपन खरपतवार का प्रयोग तो करते ही हैं, सभी कर रहे हैं, मैंने भी किया है, लेकिन ये जमीन के मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जो भी हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं वो निश्चित ही खरपतवार को तो नुकसान करता है, पर कुछ मात्रा में मृदा स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि हमेशा कि जब भी हम जो है बोने के तुरंत बाद देखते हैं, 10 दिन 12 दिन बाद, यदि कुल्पा डोरा चल जाए, जैसे आपके जो मालवा क्षेत्र है, निवार क्षेत्र है, यहाँ आज भी कुल्पा डोरा चलता है, बैल जोड़ी रखे हैं, या आज 9 इंच के टायर जो रहते हैं, या कतार की दूरी यदि हमारी 14 इंच पे है, तो कुल्पा डोरा या कुरपनी यदि निकल जाए तो वो बहुत लाभदायक होता है बजाय रसायनों के उपयोग के। तो जितना हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं उससे निश्चित है मृदा के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले आप जो यांत्रिक विधि हमारी कुल्पा डोरा इसका उपयोग करें, उसके बाद यदि आपको लगता है तो कोई रासायनिक विधि का उपयोग करें।
0: बिल्कुल, हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
5: सर मैं, हेलो
0: जी, पहले आप अपना जो सेट है उसका वॉल्यूम कम करिए।
5: गुना मध्य प्रदेश से
0: जी। हेलो,
5: देशराज सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी जी जी, देशराज जी गुना से बोल रहे हैं, बताएं क्या प्रश्न है आपका?
5: मैम मेरा हमारा ये प्रश्न है, जैसे अभी हल्की बारिश हो रही है तो ऐसे में कई किसानों की जिज्ञासा है कि जो खरपतवार की दवाई डाली जाए या न डाली जाए, क्योंकि इसमें नमी का होना बहुत जरूरी है, ऐसे में काफी समस्या आ रही है।
2: बिल्कुल, आपने पुनः एक बार आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने पूछा कि हल्की बारिश हो रही है, तो जब भी हम दवा का उपयोग करेंगे तो ये ध्यान रखें खेत में नमी होना आवश्यक है। हल्की बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, या आपने दवा डाली उसके कम से कम 6 घंटे तक यदि पानी नहीं गिरता है, तेज पानी यदि नहीं गिरता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि तेज पानी गिरेगा तब आपकी खेत की दवा का असर जो है कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी की अवस्था में ही खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करें। 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग करें। फ्लैट जेट या फ्लैट फैन करके जो नोजल आते हैं उनका उपयोग करें, और हवा की दिशा जहाँ चल रही हो विपरीत दिशा में जो छिड़काव न करें। इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप खरपतवार का बड़े आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मतलब थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई तो कम दवा में भी उन्हें अच्छा असर देखने मिलेगा। हम बात कर रहे थे कीट प्रबंधन की, तो आप एक जो उपाय बता रहे थे उसके बारे में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे।
2: हम सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट की बात कर रहे थे। समन्वित कीट प्रणाली वो होती है जिसमें 2-3 प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जैसे टी आकार की खोटी। सोयाबीन बोने के बाद यदि खेत में हम हर 10 मीटर पे कम से कम 1 एकड़ में 15 से 20 यदि डंडियां गाड़ दें, खूंटी गाड़ दें टी आकार की या 2 मुंह वाली, तो उससे क्या होगा, पक्षी आके बैठेगा और जैसे ही उसको इल्ली देखती हो पक्षी वो जो है इल्ली को खा लेगा। तो ये हमारे कीट नियंत्रण का एक तरीका है। फिर हमारे कुछ नीम ऑयल आते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल का कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ जैविक कीटनाशक आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, या मठा है, छाछ है, तंबाकू चूना है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर अंत में हम रसायनों का उपयोग करेंगे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो ये हमारा समन्वित तरीका है।
0: बिल्कुल, हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
6: नमस्कार, मैं मदीप चंद साहू बोल रहा हूँ, ग्राम बलभतपुर नंबर 1 थाना तहसील जयपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश से। मैम
0: बिल्कुल बिल्कुल, शहडोल में पानी वगैरह गिर रहा है दीपचंद जी?
6: जी मैं रहा है, आज ही तो गिरा है, कल भी गिरा था।
0: क्या क्या लगाया है खेत में?
6: मैम हो गया अभी तो अपन ने सागा में हो गया, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं।
0: तो क्या प्रश्न है आज आपका विशेषज्ञ से?
6: मैम प्रश्न ये था, अपन ने हमने खेत पे फरा लगाया था, तो जैसे कि 1 महीने से ज्यादा हो गई तो उसमें दिक्कत है क्या? मैम
2: क्या लगाया था फिर से बताएं?
6: फरा लगाया था धान का,
2: धान का रोपा लगाया था। जी
6: जी जी जी जी जी जी वही वही सर।
2: हाँ, तो अभी उसकी रोपाई नहीं हो पाई है?
6: अभी नहीं हो पाई है सर।
2: चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी पानी की क्या स्थिति, पानी पर्याप्त नहीं गिरा आपके क्षेत्र में?
6: नहीं नहीं सर, पर्याप्त नहीं था, कल से तो गिरा हुआ है अभी।
2: कौन सा किस्म का रोपा डाला था आपने? धान की कौन सी किस्म है, मोटा अनाज है कि सुगंधित है?
6: 64 का है सर।
2: अच्छा, हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड कंपनी का है, प्राइवेट का?
6: जी जी, जी।
2: हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-4-6 दिन में
6: और था सर मेरा।
2: हाँ पूछिए।
6: सर मिर्चा मैं जो है तो बल्टी में थरा हुआ हूँ और

0: पेड़ भी हो चुका है, उसमें फूल आ गए हैं सर, फर क्यों नहीं रहा?
1: दोनों का हम जवाब देते हैं। पहले तो आपने धान की रोपा की बात करी, तो देख लें यदि 5-6 दिन में यदि पर्याप्त पानी गिर जाता है, खेत में मचाई हो जाती है, तो धान का आप रोपा लगाएं, अन्यथा इसके बाद जो है 5-6 दिन में यदि लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर धान के रोपे में आप काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर आपका उत्पादन जो है नहीं मिल पाएगा। दूसरा आपने मिर्च की बात करी कि मिर्च में फूल आ गया है, फल नहीं लग रहा है या फल झड़ रहा है, तो उसके लिए एक दवाई आती है जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है, 3 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें, और एक NPK आता है 052-34 करके, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, मात्रा रहेगी 1 kg 200 लीटर पानी 1 एकड़ में। तो इन दोनों में से किसी एक दवा का यदि आप छिड़काव करेंगे तो मिर्च में जो समस्या है इसका आप नियंत्रण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई बिल्कुल सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, विषय है सोयाबीन में समसामयिक कृषि कार्य, और आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे। डॉक्टर साहब, सोयाबीन की फसल में अफलन की समस्या भी होती है, इससे कैसे बचा जाए हमारे किसान भाई, इसके बारे में उन्हें बताएं।
1: कई बार ये देखने में आता है कि सोयाबीन की फसल में किसान भाई कहता है कि फूल नहीं आया, जबकि होता यह है कि उसका फूल जो है झड़ जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण है कि जो किसान भाई सोयाबीन की बुआई करते हैं वो जो है उसको घना ज़्यादा बोते हैं, 9 इंच या 12 इंच पे बोते हैं, जबकि सोयाबीन को 14 और 16 इंच पे यदि हम बोएंगे तो वो ज़्यादा घना नहीं होता है। तो अधिक घना होने से क्या होता है, उसमें गर्डर बीटल जो हमने बात करी थी, गर्डर बीटल जो है फूल बौणी को काट के गिरा देता है, और फिर किसान को ये लगता है कि साहब उसका सोयाबीन बढ़ता जा रहा है और उसमें फल नहीं आ रहा है या फूल नहीं आ रहा है, तो ये अफलन की समस्या रहती है।
2: बिल्कुल, हमारे किसान भाई और हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: जी मैम, मैं कुमराज से बात कर रहा हूँ, गुना जिला से।
2: जी जी बताएं, क्या नाम है आपका?
3: जी मैम, मैंने अभी मक्का की फसल लगाई है खेत में, तो उसमें क्या मैंने मतलब जैसे खरपतवार नाशी दवा डाल दिए, तो लगभग इसके कितने दिन बाद मैं यूरिया खाद रख सकता हूँ उसमें?
1: आपने मक्का की फसल में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर दिया है, तो ध्यान रखें कम से कम 5 से 7 दिन बाद हम यूरिया का छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमको ये देखना होगा कि आपने जो कचरे की दवा का उपयोग करा है उससे कचरा पूर्णतः मर जाए, यदि वो मरेगा नहीं और आपने यूरिया रख दिया तो वो फिर से जो है जीवित हो जाएगा, तो कम से कम 5 से 7 दिन का इंतजार करें, जब आपका कचरा पूर्णतः पीला पड़ के सूख जाए उसके बाद ही आपको यूरिया जो है पौधों के नीचे जड़ के पास रखना है।
2: बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं कि सोयाबीन की फसलों में कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर साहब, पीला मोजेक वायरस जो है वो काफी देखने को मिलता है, सोयाबीन में भी उड़द में भी देखने मिलता है, तो अगर ये रोग दिखता है तो कैसे इसकी पहचान की जाए और नियंत्रण क्या हमारे किसान
1: इसकी भाई करें? पहचान का बड़ा आसान तरीका होता है कि खेत में आप देखेंगे पहले कुछ पौधों की पत्तियों में पीला रोग, पीली पत्तियां दिखेंगी, वो कुछ ही होंगी, हो सकता 4 पौधे 10 पौधे 15 पौधे 20 पौधे, तो पहला काम उन पौधों को खेत से उखाड़ के नष्ट करना है, और फिर जो है उसके लिए उपयुक्त जो है कीटनाशक आते हैं जैसे थायोमेथॉक्जाम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन या थायोमेथॉक्जाम एसिटामिप्रिट, तो एक किसी दवा का ध्यान ये रखना है कि पीला मोजेक के नियंत्रण में शुरुआती अवस्था में जो है सिंथेटिक पायराथ्राइड्स जो आते हैं उनका उपयोग नहीं करें।
2: बिल्कुल, और सफेद मक्खी भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत परेशान करती है सोयाबीन की फसल में।
1: जी, ये पीला मोजेक के जो है वाहक का कार्य करती है और इसको फैलाने का कार्य करती है, तो इसका नियंत्रण जो है बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी जैसे हमने आपको बताया कि एसिटामिप्रिड है, थायोमेथॉक्जाम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन है, मात्रा 200 ml प्रति हेक्टेयर, या बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है 400 ml प्रति हेक्टेयर, दोनों तीनों में से कोई एक दवा का यदि आप छिड़काव करेंगे तो आपका ये सफेद मक्खी जो है आसानी से नियंत्रित हो जाएगी।
2: किसान भाई हमसे जुड़ने चाह रहे हैं। बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम मौसम देख रहे हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी अचानक से पानी आ जाएगा या फिर कभी एकदम से धूप निकल जाएगी, तो ऐसे बदलते हुए मौसम में जो हमारे किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगाई है उसका कैसे वो नियंत्रण करे?
1: बिल्कुल, इसका सबसे पहला हमको देखना है कि फसल की निगरानी, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे हम खेतों में जाएं, अंदर जाके देखें कि फसल में कहीं कीट रोग बीमारी कोई लक्षण तो नहीं है, और यदि हमको दिखता है तो हम उसके लिए पहले तो हमको फसल की सतत निगरानी रखना है, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है

0: कम करेगा तो हो सकता है कीटों का प्रकोप हो जाए या रोगों का प्रकोप हो जाए, तो इस बात का हमको जो है ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमको जो है नियंत्रण करना है।
1: बिल्कुल, बात हो रही है कि खरपतवार नाशी है दवाइयों का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो अगर वो चाहते हैं कि जैविक उपयोग करना चाहते हैं तो जैविक उपायों में क्या-क्या है?
0: जैविक में तो केवल खरपतवार नाशक नहीं आते हैं, उसका यांत्रिक नियंत्रण है जिसको हमने पहले भी बताया था, कुल्पा है, डोरा है।
1: थोड़ा सा रोकना चाहूंगी
0: जी,
1: हमारे किसान हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं कमल सिंह सोजोनिया
1: जी,
2: किरार,
1: हाँ,
2: दमुआ तहसील जुन्नार देव,
1: हाँ,
2: जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम जी।
1: जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
2: नमस्कार मैडम
1: जी। जी नमस्कार,
2: मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, देख नहीं पाता हूँ।
1: जी जी,
2: मेरा प्रश्न ये है
1: जी
2: कि जैसे आप लोग अभी सोयाबीन के बारे में बता रहे हैं
1: जी,
2: हमने सुना है कि सोयाबीन की जो फसल किसान लगाते हैं उससे धरती खराब हो रही है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे हम लोग जो उपभोक्ता है जो सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, क्या हमारा शरीर भी खराब होता है मैडम ये सोयाबीन से? क्या डॉक्टर साहब विस्तार से बताइए जी।
0: हाँ बिल्कुल, आपने जो है बड़ा अच्छा प्रश्न करा है। सोयाबीन की फसल से हमारे खेत खराब नहीं होता है, न मृदा खराब होता है। ये एक तेल वाली फसल है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तेल की मात्रा होती है, तो इसमें जो है हमको यदि खादों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे सल्फर का उपयोग है ना, तो सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है कि बुआई के समय हम जो है पहले हम राखड़ का उपयोग करते थे, सिंगल सुपर फास्फेट राखड़, तो दो बोरी एकड़ के हिसाब से हम राखड़ का उपयोग करें। और यदि हमने उपयोग नहीं करा है तो बेंटोनाइट सल्फर का आता है 95%, इसका हम उपयोग कर सकते हैं 10 किलो एकड़ के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि सोयाबीन की वजह से हमारे मदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फसल चक्र में परिवर्तन होते रहना चाहिए, एक ही फसल को कई साल तक नहीं लगाना चाहिए। तो यदि हम फसल का बदलाव करेंगे, सोयाबीन की जगह मक्का लगाएंगे, मक्का की जगह धान लगाएंगे, धान की जगह अरहर लगाएंगे, तो हमको अपने खरीफ फसलों का फसल चक्र को लगातार हर 2 साल में 3 साल में फसल चक्र यदि हम बदलते हैं तो उससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य जो है बना रहता है।
1: बिल्कुल, और इन्हें एक प्रश्न और किया, क्या सोयाबीन खाना मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है?
0: बिल्कुल अच्छा है, प्रोटीन की पूर्ति होती है, आवश्यक भी है
1: जी।
0: तो उसको बड़ा सीधा सिद्धांत है, यदि हम 10 किलो आटा पिसा रहे हैं तो उसमें आधा से 1 किलो यदि हम सोयाबीन को मिला लें तो उसको मिला के यदि हम खाते हैं तो प्रोटीन की पूर्ति होती है और लाभदायक होता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। हमारे एक और किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: जी मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं नरेंद्र जी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर
0: से। जी नमस्कार,
1: बताएं क्या है नरेंद्र भाई, आज का प्रश्न क्या है आपका?
3: मेरा सवाल ये है कि हमने सोयाबीन बोई JS 2172 1 महीना 3 दिनों की हो गई मैम, उसमें छोटी छोटी हरी इल्लियां लग रही है। और दूसरा सवाल ये है कि हमने खरपतवार नाशी दवा डाली थी मैडम, वो 50% काम किया, उसमें डबल से डाले कि हाथों से उखाड़े उसको?
0: यदि संभव हो तो आप हाथ से उखाड़ ले, और नहीं तो लगता है तो आप खरपतवार नाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। आपने एक हरी इल्ली की बात करी कि हमको सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप दिख रहा है, तो उसके लिए जो है अभी जो है क्लोरेंटा निलीप्रोल दवाई आती है 18.5 SC के नाम से, इसका हम उपयोग कर सकते हैं 60 ml एकड़ के हिसाब से, 150 ml हेक्टेयर के हिसाब से, या प्रोफेनो प्लस साइपर आता है तो हल्की दवा का हम उपयोग करके जो हरी इल्ली को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहुत जागरूकता से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सभी सुन रहे हैं हेलो ग्राम सभा, सोयाबीन में समसामयिक कृषि कार्य, डॉक्टर स्वप्निल दुबे आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: लछुलकारी गाँव से।
1: हेलो, हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: दिनेश केवट बोल रहा हूँ मैं।
1: दिनेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
4: ये अनूपपुर जिला, ग्राम छुलकारी।
1: अच्छा, कैसा है अनूपपुर का मौसम, कैसा चल रहा है?
4: ये अपने एरिया में, ये फुनगा एरिया में तो किसान का काम जारी है।
1: और क्या बोया है आपने दिनेश जी?
4: ये धान बोया है मैं, ये जो जैसे रोपा लगाएंगे हम तो उसमें खरपतवार ज्यादातर आ जाता है, जैसे कि हाइब्रिड थोड़ा दूरी दूरी रहता है।
0: हाँ हाँ,
4: तो उसके लिए क्या उपचार करें?
0: हाँ, रोपा वाले धान में कई बार जो है खरपतवार की समस्या रहती है, और इसमें दो तरह के खरपतवार रहते हैं धान के, यदि हम बात करें, एक तो सांवा आता है जो धान जैसे ही होता है, और धूप घास आता है या चौड़ी पत्ती के आते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त जो है बिस्पायरीबैक सोडियम है, क्लोरीमुरान प्लस मेटसल्फुरान है, कोई एक दवा का आप उपयोग करें तो इससे आप धान में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों ने बहुत जागरूकता और सजगता के साथ आज का हेलो ग्राम सभा सुना और उसमें भाग भी लिया। किसान भाइयों, समय सीमा का ध्यान रखना हमारे लिए हमारी मजबूरी है। आज के हेलो ग्राम सभा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। जिन किसान भाइयों ने फोन किया उनका हृदय से धन्यवाद। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आज का जो हेलो ग्राम सभा था उसका विषय था सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य। विशेषज्ञ हमारे साथ थे डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। कार्यक्रम अधिकारी थे श्री चंद्रशेखर शर्मा, ड्यूटी ऑफिसर स्वाति राजपूत, कंट्रोल रूम अधिकारी आर एस मीना, राजू वासे, उद्घोषक हमारे साथ थे अभिषेक शर्मा और मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रेगवार। और आपको चलते चलते कल के कार्यक्रम बता दें, कल कृषि चर्चा में सुबह जरूर सुने 6:45 पर खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में। और कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सलाह जरूर पत्रों के माध्यम से हमें बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन है 462002। और किसान भाइयों कल सोमवार को फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का आपका अपना कार्यक्रम होगा लोक रंग, इसे जरूर सुनिएगा और अपने इन गीतों का आनंद जरूर लीजिएगा। और डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी सार्थक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान
0: सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: बिल्कुल, तो किसान भाइयों, अपन ने आपने जो इतनी अच्छी बातें करी कि चाहे आप अरहर लगाएं, चाहे आप सोयाबीन लगाएं, चाहे आप मक्का लगाएं, लेकिन अगर आप निगरानी करेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। निगरानी करने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप कीट नियंत्रण करें, किस तरह से आप फल उपयोग करें अपनी दवाइयों का, और खरपतवार नाशी आप उतना ही उपयोग करें जितनी की अनुशंसा की जाती है। तो कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। अपनी ईरानी बहन को दें अनुमति, स्वीकार करें। राम राम,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संबोधन मन की बात की 136वीं कड़ी, जिसमें कारगिल विजय दिवस से लेकर आत्मनिर्भर भारत, जल संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन का हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार
2: अशोक जी, आपकी दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
3: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है। उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं या भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इस कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया, तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है
2: जी।
3: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। और इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। यानी आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों के तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। यानी दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
2: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया भी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
4: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
2: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्र गिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का, क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
3: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था और ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं। तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्र गिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ, 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भाई एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अब दुनिया का भरोसा भी, विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
2: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया,
4: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
3: बिल्कुल, साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और इसी महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड्स भी हुए थे और इन कंपटीशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण

0: पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की और पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते और इनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ रहा है और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
1: अशोक जी, क्या अब वोकल फॉर लोकल की बात थी वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है?
0: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उसमें किसी ना किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बन रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ते ही हैं लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इससे राष्ट्र भावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
0: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह तब तो इसका कोई लाभ नहीं है लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़चढ़ कर भाग लेता है तब वो ये सब बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। यानी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं जिसके कारण ये सब चीजों में भारत आगे बढ़ रहा है।
1: और प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं, और उसके चलते ये जो जल अभियान है यानी जो इसको संरक्षण करना है ये भी हर बार

0: और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है, ग्राउंड वाटर को इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया। कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में, पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक

0: फ्लेक्सिब प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
0: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में, ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
0: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है, जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
0: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं है?
0: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए, इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है, किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमसी योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएमसी योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास

0: विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
1: नमस्कार, बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं। ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को तो लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
2: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले जाएगा।
3: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
0: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान था आकाशवाणी भोपाल का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लक्ष्य फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आपने लक्ष्य फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और आइए अब आपको सुनवाती हैं यादें फिल्म का गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: यादें फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक विध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
3: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
4: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
6: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
7: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार संध्या का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आप सभी को इंतज़ार होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो इस कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से हमारे श्रोतागण हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोतागण हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। कुलम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा, प्रतिशा संधु और मैक्स की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत हकीकत फिल्म से। आवाज़ें हैं हरिहरन और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत है दिलीप सेन का।

अभी आप सुन रहे थे हकीकत फिल्म का गीत, आवाज़ें थी हरिहरन और अलका याग्निक की। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मीरा का मोहन का ये फरमाइशी गीत, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत है अरुण पौडवाल का। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं कोलपोल उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता नैनवाया, विवेक, मनीष और शिवांश नैनवाया। निर्मल रेडियो श्रोता संघ गोपालगंज सागर से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है नीरज जैन, बबलू, नितिन जैन, मोनू, निमेश जैन, मिनी, सरिता, नम्रता, साक्षी, संजय, नीतू सिंघई, संजना सिंघई, सिद्धार्थ सिंघई, निहाल, निकिता, नियति, नियोम, सुयश, यशविन, चंद्रप्रभा, प्रतिमा जैन, रवि और मेराकी की। पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारविसगंज बिहार से ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक, पीहू और कुमार विमल की। नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से लिखने वाले हैं ममता रानी, छवि, अनोखी, अर्पिता, लाडो, दीक्षा, देव, देवांशु और डब्लू जी। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मीरा का मोहन फिल्म का ये गीत।

अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में अभी आपने मीरा का मोहन फिल्म का गीत सुना। और आइए अब लेते हैं अगली फरमाइश। छत्तीसगढ़ पलारी से हम तक पहुंची है प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की फरमाइश। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोतागण हैं मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू की फरमाइश हमें मिली है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मेला फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं देव कोहली, सोनू निगम, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौर, नितिन मुकेश और साथियों की। गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक का।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये अगला फरमाइशी पत्र हमें प्राप्त हुआ है यादव मोहल्ला सनावत से। लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और योगेश मालाकार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें व्हाट्सएप फरमाइश मिली है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलावीन शाह और राजेंद्र जी शाह की। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोतागण हैं दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य और सक्षम शाक्य। छटिया पोखर डुमराव से हमारे श्रोतागण हैं बलीराम बेलदार, डब्लू बली बेलदार, अस्मा बली बेलदार, सोनम बली बेलदार। बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन कटरिया और उल्लाह वली कटरिया की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे सभी श्रोतागण सुनना चाहते हैं खुदगर्ज फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत की आखिरी फरमाइश हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये फरमाइश मिली है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप दीप की। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। मालियाना सरधना मेरठ से ये फरमाइश मिली है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन की। उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोतागण हैं कमला रानी, बोधराज खोरबाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरबाल। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंगधरे और आरती जोधले। जयपुर जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर की फरमाइश हमें मिली है। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश, बॉर्डर फिल्म का गीत। आवाज़ है रूप कुमार राठौर की, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

रूप कुमार राठौर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पुरस्कार यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासुवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: ही में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसि लागला लंकेव

0: पथ्यवचन भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन झिड़कारुन एक आप्त दूत हर विला लंकेवर काल कठिन आज भादला
1: सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आसमान से बरसती बूंदें बूंदें नहीं हैं, कविताएं हैं। बरस रही है रूमानियत आसमान से। बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, बारिश त्योहार है, और इस त्योहार को कमरे में बंद होकर नहीं मनाया जा सकता। बारिश खिड़की से नहीं देखी जाती, बिना छाते या रेनकोट के निकल जाना चाहिए सराबोर होने के लिए, क्योंकि बारिश तो धरती का उत्सव है, बारिश तो हमारा त्योहार है।

हमने कहा ना कि बारिश तो धरती का उत्सव है। जैसे ही मौसम की पहली बूंदें पड़ती हैं, मुस्कुराने लगते हैं पेड़ पौधे। देखिए तो कैसे पत्तों का रंग उजला हरा हो जाता है, घास जैसे नाच उठती है, फूलों पर ठहरी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, पंछी चहचहाते हैं तो लगता है कुदरत के इस उत्सव में चल रही है कोई जुगलबंदी। ऐसे मौसम में नदियां और तालाब भी झूम पड़ते हैं, झरने भी गुनगुनाते हैं, बादल छेड़ देते हैं कोई राग। ऐसे मौसम में उदासी घुल जाती है, धुल जाती है। चलो बारिश में भीगने निकल पड़ो।

बारिश सबको खुश नहीं करती, बारिश किसी किसी को उदास भी करती है। सवाल यह है कि इतनी झूमती हुई खुशियों वाली बारिश किसे उदास करती है? बारिश उसे उदास करती है जिसका साथी उसके पास नहीं। बारिश उसे उदास करती है जो किसी का हाथ पकड़कर सराबोर होने निकल नहीं सकता। बारिश उसे उदास करती है जो अकेला है। बारिश अकेले लोगों के लिए एक तकलीफ है। अकेले लोगों के लिए बारिश बहुत सारी यादों की जुगनू लेकर आती है जो उनके अकेलेपन को रोशन करते हैं।

0: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता।
0: हम अभी हाजिर हुए।

गिरती धरती पर राहत के कुछ छींटे पड़े। जब ठंडक मिली तो सब झूम उठे। बारिश का ये मौसम धरती के चहेतों के लिए काम का मौसम है। मेहनत के पुजारी, धरती पर बीज बिछाने वाले किसान जो पूजा करते हैं इस धरती की, बीज बिछाते हैं प्यार के, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा न रहे। बारिश के इन दिनों में भीग भीग कर खेतों में काम करने वाले किसानों को सलाम, उनकी मेहनत उनकी लगन को सलाम। सचमुच हम उनके कर्जदार हैं।

चलो मिलकर भीगे बारिश में, तुम कुछ गुनगुनाओ और तुम्हारे साथ जुगलबंदी करे ये बारिश। इस झूमती बारिश में शहर की सड़कें नापने का लुत्फ ही कुछ और होता है। शहर अगर समंदर के किनारे हो, लहरों में सराबोर होने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पास में है कोई नदी, तालाब या झरना, तो उसका तिलस्म बारिश में देखते ही बनता है। बारिश रूमानियत का मौसम है। बारिश की इस रूमानियत को किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हाँ, तो इस बारिश में क्या कर रहे हैं आप? अपनों की टोली के साथ पिकनिक का कोई इरादा है, या फिर बस कमरे में बैठकर खिड़की से बारिश के छींटे पड़ते देखने हैं? अगर आपके अपने साथ हैं तो ये बारिश आपके लिए है एक संगीत से भरा मौसम, और अगर आप अकेले हैं तो ये बारिश आपके लिए विरह की चुभन लेकर आई है। जिंदगी का एक पहलू विरह भी है। जब कोई अपना दूर हो तो शिद्दत से पुकारना चाहिए उसे, और इंतजार करना चाहिए उन दिनों का जब मिले अपने साथी का साथ।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी,
5: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया,
5: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश,
5: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
5: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना ना हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
5: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
5: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
6: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: याद आई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।